0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां शस्यशां।

我是米达祖玛达来说比你苏纳西尼苏玛图拉帕西尼

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 5वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 26 मई सन 2026। दोपहर के 12 बजने को है। हमारी ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है। हमारे प्रसारण उपलब्ध हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म क्रांति से। स्वर दिया है नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने।

आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाएं, उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: चू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
5: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
4: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल

लव इन टोक्यो। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है लता मंगेशकर का ही, फिल्म है सौदागर।

इश्क से टकरा था और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे। मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था।

आए को समझ कर मैं हंसी ताज महल चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं।

0: मजबूर तमन्ना के कदम।
1: कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आपने सुना गीत मोहम्मद रफी के स्वर में, फिल्म थी मेरे महबूब। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी जैसलमेर का ये गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पढ़े तो हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
1: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
1: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
1: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
1: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
1: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
2: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी ठीक वैसे ही ना, जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
2: बिल्कुल सही, जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
2: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
2: अजीत जी चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
2: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
2: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
2: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
2: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
2: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
1: जी
2: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा
2: जी।
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
2: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
2: जी।
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
2: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
1: जी।
2: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें
2: जी।
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है
2: जी। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
2: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
3: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
4: अ जू?
3: यस, अ जू।
4: Oh, yes.
3: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
4: Tiger. A lion.
3: Yes.
4: Monkey. Birds of different kind.
3: Very nice.
4: Camel. Giraffe. And so on.
3: Oh, wow. So, here is a child like you. Who wants to go to a zoo? Now, let's recite this poem. And you all repeat after me. Ready?
4: Ready!
3: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
4: We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: And a lion too.
4: And a lion too.
3: We are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: The monkeys swing and climb.
4: The monkeys swing and climb.
3: They know it's feeding time.
4: They know it's feeding time.
3: The polar bear and seals.
4: The polar bear and seals.
3: Enjoy their fishy meals.
4: Enjoy their fishy meals.
3: Yes, we are going to the zoo.
4: We are going to the zoo.
3: The snakes all slide along.
4: The snakes all slide along.
3: The skunk just makes a pong.
4: The skunk just makes a pong.
3: The tiger gives a roar.
4: The tiger gives a roar.
3: He wants to eat some more.

enjoy their fishy meal.

0: This was Polar Bear. And this was Skunk. And this was Kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सके।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: वीर जोरावर की
2: जय।
1: जय जयरापुर जय भारत।
2: जय जयरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
4: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
3: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
4: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और

0: जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
1: जी मंत्री जी।
0: जी महाराज।
2: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
3: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
4: जोरावर सिंह महाराज आ रहे थे। महाराज जोरावर सिंह
2: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
1: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
2: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
1: देखिए निजाम साहब।
2: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
2: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
2: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
1: जी।
2: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
5: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
2: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
6: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
5: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
4: बिल्कुल।
5: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
7: आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
5: लेकिन जरा होशियारी से।
7: जो हुकुम सरकार।

0: Hocam! Tüm çağrı taraf se gün çüke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest.
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी,
1: हाँ। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
2: हुजूर,
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है।

0: एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
1: चलो इसको,
2: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
3: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान भी क्यों न गंवानी पड़े।
4: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
5: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
0: अप्पा ये नहीं हो सकता।
5: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
5: Why?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
5: Yeah.
0: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
5: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
5: एक्चुअली यू आर अ फूल।
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
4: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
4: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
4: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
6: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
9: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
8: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
9: तो फिर सही नंबर
8: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट।

0: साइन या तो काट।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
6: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
5: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
6: कहाँ से पता चलेगा?
5: उद्गम से, आरबीआई के उद्गम पोर्टल पे।
7: आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से होगा।
8: समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर स्थित सांचू सीमा चौकी पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा बलों के साथ संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को भी सीमावर्ती क्षेत्रों को समर्पित किया। इसके जरिए भारत पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में शिक्षा, सड़क, बिजली और रोजगार सहित बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले के गांवों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ रहे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, बीएसएफ डीजी प्रवीण कुमार, आईबी चीफ तपन डेका और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। गृह मंत्री बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा पर मंथन करेंगे। इस समन्वय बैठक में गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के उच्च अधिकारी तथा बीएसएफ के अधिकारी शामिल होंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। डॉ जयशंकर ने जोर दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वैश्विक विकास और स्थिरता का प्रेरक बना रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र से संबंधित मामलों में सहयोग करने वाले लोकतांत्रिक देशों और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में क्वाड देशों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित मुद्दे के समाधान के लिए कूटनीतिक विश्वास बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और आर्थिक अवसरों तथा विकल्पों को प्रोत्साहित करने के साथ ही आपसी सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। विदेश मंत्रियों की ये बैठक वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया संकट के समय में हुई है। भारत ने क्वाड समूह की मौजूदा अध्यक्ष के रूप में ये बैठक आयोजित की। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से देश में बीमारियों की रोकथाम से जुड़ी सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन देन है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज और 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं। इस बीच 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दाऊदी बोहरा समाज की ओर से आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर अजमेर में शिवाजी पार्क स्थित बोहरा मस्जिद में बकरीद की नमाज अदा की गई। इसके बाद सबने देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि मुख्य रूप से बकरीद का पर्व 28 मई को मनाया जाएगा। राज्य में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। दिन में सूरज की तेज तपिश लोगों को बेहाल कर रही है, वहीं रात में भी गर्म हवाओं का असर देखा जा रहा है। कोटा में अधिकतम तापमान कल 45 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं चित्तौड़गढ़, चूरू, करौली, दौसा और झुंझुनू में रात भर गर्म हवाओं का प्रकोप रहा। हनुमानगढ़ और अलवर में रात का तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राजधानी जयपुर में दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कों पर पानी के छिड़काव से लोगों को राहत देने की कोशिश की गई। लू और उमस के कारण पर्यटन स्थल भी सूने नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने कल शाम से मौसम में हल्का बदलाव होने का पूर्वानुमान बताया है। उत्तर पूर्वी जिलों में 28 मई से आंधी और हल्की बारिश की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। वहीं कल मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और विजेता टीम क्वालिफायर टू में पहुंचेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार। आपने ट्यून किया है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है बहनों का कार्यक्रम पणिहारी।

0: पणियारी कार्यक्रम सुनने वाले सगले सखियों ने और सगले श्रोताओं ने रेडियो सखी गुंजन ना गणा गणा राम राम
1: राम राम गुंजन मैन। आपने भी गणा सारा और सखिया ना भी राम राम गुंजन मैन। देखो बाहर तो एड़ी गर्मी बड़ी बड़ी हाल बेहाल हो रहे।
0: बिल्कुल,
1: और अपारी बहनों भी ये सु केस गन जूझ रही है। और बहनों की पूरो मतलब शहर के कहीं आना तो पूरो राज्य में ना भी भीषण गर्मी तो दौड़ चली।
0: पूरो देश भीषण गर्मी से जूझ रहे हुए। और ये भीषण गर्मी की वजह से देखो म्यारी भी हालत केड़ी हो गई
1: जी। आवाज उठा बड़ी बड़ी हुई कि
0: सर्दियों में भी एड़ी जुकाम खांसी नहीं वे जेड़ा आनो ये गर्मी में हुई है। अरे ये कारण है लू और ताप का। अपोरो खुदरो बचाव अपोरी सावधानी अपन को होवे लेकिन फिर भी केत न केत चूक रहे जानो आप एड़ा जकड़ी जाए
1: जी।
0: देखो जकड़ी गया चुको तो जकड़ी गया मगर तो इलाज चुको है अपन ध्यान है के कई तरीके से रहना तो थोड़ी सी सावधानी बरती जावे और थोड़ा ध्यान रखियो जावे कि ए चीज आगे कहां तक नहीं बन जावे। तो वेरी थोड़ी सावधानी रखनी है। जरूरत से ज्यादा पानी पियो और छाछ माथे अधिक जोर दो। देसी चुको भी लिक्विड चीजो है पिए पेय पदार्थ अपना देसी कैरी रो पानी है इमली रो पानी है नींबू पुदीने री शरबत है या नींबू पुदीने रो पानी जो आप बनाए के पिया करें वो है। सामान्य रूप से घरों में आजकल गुलाब रो शरबत तो आप बाजार आ रो रखो ही जाओ लेकिन जो घर में बनाया जावे गुलाब री पत्तियों से बनो रो वो शरबत है। तो ऐ जो ठंडा पेय पदार्थ है रूर साथ साथ अपनी एक देसी चीज है ठंडा ही जो भी एक बढ़िया ठंडक रो काम करे जो होली से चालू हुए बननी तो एड़ा ठंडी ठंडी चीजों रो सेवन करना। और सबसे ज्यादा तो जरूरी है छाछ रो सेवन करना क्योंकि नमक मिलोड़ो हींग मिलोड़ी छाछ जा पर शरीर में गुण कर से और गरीब जो शरीर गर्मी है जो लू से जकड़ो जकड़ी जोड़ा हो बिना पर ही शरीर से बाहर कट से और तापमान न संतुलित करण में छाछ एक अहम भूमिका रहा करे
1: जी।
0: तो अपनो शरीर जो है वो बाहर अति तेज गर्मी है और घर में आप एसी कूलर आगे बैठा है और उरे बीच में आप जब आवे जावे निकले जानो ये मौसम री मार आप जकड़ लिया गए।
1: जी।
0: तो ये मैं अपने शरीर और तापमान संतुलित रखने वास्ते ये सब चीजें जरूरी है। तो हो सके जब तक यो सेवन करो अधिक से अधिक अगर जकड़ी भी या तो कोई बड़ी बात को नहीं लेकिन पाछो ठीक होना जरूरी है। तो उरे वास्ते सब तरीका है जो अपनाओ और साथ ही आप जो देशी भाषा में क्या था कि प्याज नो बगल में लेन रखो। प्याज खाओ और प्याज रो सेवन करनो प्याज का पास रखनो ये भी लूज हो अपनो बचाए गए। तो अधिक से अधिक ये चीजों रो सेवन किया जावे तो लूज हो आप खुद नो बचाए सको।
1: ये बात भी था सही बताया कि प्याज

0: मिले और कौम करे नी ताकत
1: आवे।
0: हाँ ये गर्मी में अपने मई इतनी गर्मी लग रही है कि भोजन हैवी जब को हैवी भोजन ले लो नहीं तो उस और शरीर गर्म हो जाए।
1: हाँ।
0: तो ये वास्ते हल्को भोजन और जब खिचड़ी है दलियो है और कड़ी है एड़ो एड़ो भोजन नो सेवन कियो जावे या जो को गर्मी री सब्जियां पर आवे आया करे चंदेलो है पालक है
1: जी
0: यहाँ रो अधिक से अधिक सेवन करियो जावे तो ए अपने शरीर ने ठंडक दे से। अच्छा चंदेलरी सब्जी जो आप ना सामान्य रूप से लोरी कढ़ाई ले में बनाए खाओ
1: जी
0: तो खुद आयरन और वे ना लोरी कढ़ाई में बनाए गए तो आयरन की भरपूर मात्रा अपने शरीर में पहुंचे और वे ना गरम गरम सब्जी ना थे दही में डाल के खाओ तो एक तरह रो रायतो बन जावे चंदेलर तो दोनों रो मिश्रण अगर आप ले मो तो वो एक ठंडक देवे। बथुए रो रायतो बथुओ भी मिलिया करे हने तो शायद वरी सीजन को नहीं क्योंकि वो सर्दियों में ज्यादातर चने की खेती में जाना बथुओ मिल जाया करे तो बथुए रो रायतो भी एक बढ़िया उत्तम आहार है। कदे कदे गर्मियों में भी मिल जावे बथुओ तो अगर वो भी मिल जावे तो चंदेले बथुए रो रायतो आप सेवन कर लो तो अभी गर्मी में एक ठंडो आहार हो जावे और शरीर ने ठंडक देवे
1: जी
0: और यो चीजों ने खावन सुखी हुए कि शरीर में हल्का बन रहे बजाय कि आप बाहर ली जो मसालेदार और सुगंध तो अपनों बड़ी आकर्षित कर से लेकिन अत्यधिक तेलीय चीजों ने खावन सुखी हो सके शरीर में पानी की मात्रा डिमांड बढ़ से तो जितो पानी शरीर में तेल का सो उतर तो पानी पीसो तो वो तेल की वे की वसारे रूप में अपने नसों में जम जाएगा
1: जी।
0: तो तेलीय चीजों कम से कम सेवन करो और हल्के फुल्के खाद्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करो। साथ ही ये मौसम में जो मिलने वाला फ्रूट है फल सब्जियां है
1: तरबूज
0: है खरबूजा है जो चीजों शरीर ना ठंडक देवे और रुतरी सबसे बढ़िया है कि रुतरी
1: अपना
0: ए तो तरबूज और खरबूजा है भरपूर मात्रा मिल रहा है अपनी जो ठेठ सो देसी चीज की थी
1: मतीरो
0: पीलू
1: मतीरो और चिबड़ी वगैरह
0: सब चीजों अपने देसी चीजा थी
1: फ्रूट होता।
0: हाँ अपना तो जो कहने के देसी मेवा आई जे तो यो पीलू हकीकत में शरीर में बहुत ठंडक दिया करे और आयरन से भरपूर रहे और ये शरीर ने तरोताजा रखे। पीलू खावन से पानी की कमी जो डिहाइड्रेशन की समस्या हो वो भी मिटे और शरीर ने आयरन भरपूर और साथ ही मिनरल्स प्रदान करे। तो पीलू और जो खाना जाल अथे जाए देखो तो जाल भरोड़े पड़े हैं वो तो है ना थोड़ा दिन पहले गई थी तो देखाई और तोड़े खाए भी आई और रुतरी हर चीज खावनी भी चाहिए। सौंगरी आवे तो सौंगरी भी खाओ केर आवे तो पक्का आवे तो वो भी खाओ गूंदा अपन है घड़ाई आवे बढ़िया कच्चा गूंदा रहो आप चार गाता है सब्जी बनाए खावा है गूंदा थोड़ा पक जावे लाल लाई आ जावे तो भी यो रही खा लियो जावे तो वो भी आयरन की भरपूर मात्रा है वो में और प्लस वो जो वो में जो चिकनाई है वो वे सो अपने घुटनों की जो समस्या है वो में निजात मिलिया करे। वो एक शरीर नो ग्रीस रो प्रदान आहार देवे ग्रीस रो चिके सुखी हड्डियों में जोड़ों में जो समस्या हुए वो मिटिया करे हुए गुंदा सो।
1: बहुत अच्छी बात बताई इस गुंजन में तो कि भाई ये एड़े अपर जो एथरो देसी
0: हाँ देसी जो अपना आहार है जो फल सब्जियां है ये रो
1: देसी जो चीजें हैं वे रो सेवन करना बहुत जरूरी है। बीजो गुंजन में एक बात बताओ कि देखो अपो हमेरी गर्मी सु बचन वास्ते घर में बैठो एक तो कि ये बाहर जाओ ना मनाई जाए कि भाई जितो हो सके घर से बाहर हणो निकलो मत दिन रे टाइम तो और जब कोई जरूरी काम है तो भले सुबह या शाम रे टाइम उन्हें निपटाए दो और जब आप घर में बैठो ही नहीं तो आजकल देखो हमें सुविधाओं भी अपन घने मिल चुकी है तो कि एसी भी चलावा कूलर भी चलावा पंखा ही चलावा तो यो चीजों जो रख रखा हुआ है नी वो गौकर करना चाहिए कि जिके सुकर की है कि ये चीजों देखे खराब नहीं हुए और लंबे समय तक चलते भी रहे।
0: सही बात है नीतू बहन ये बात तो बढ़िया बात करी और बढ़िया मुद्दों भी उठाया अपन सखियों से बारे में चर्चा करनी जरूरी है। एक तो की है कि एसी और कूलर रो ये मौसम में आपो भरपूर एसी और कूलर रो आपो ये मौसम में भरपूर उपयोग किया करा है। हेक सुविधा रे अनुसार उपयोग करना और हेक वर दुरुपयोग करना
1: जी
0: ये दोनों में फर्क है। तो पहलो रख रखाव तो आप उपयोग करण माथे ही निर्भर करेगी आप और उपयोग कौकर करा है। 24 घंटा जब आप कोई मशीन चालू रख सो तो समझ लो कि जिंदगी कितनी कम हो जा
1: जी
0: आपको खुद भी देखो नहीं

0: ओत बैठ के आपो खान पान कराए जो भी आपो लाए बैठा रहो जगह मत है तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। खान पान रो एरियो बाहर होना चाहिए और एसी में सिर्फ आराम करने अतीज होनी चाहिए और दो तीन घंटे रहो आराम ही आप एसी में करना चाहिए। इस ज्यादा शरीर में एसी रो उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: देखो बहुत बढ़िया बात बताई था कि एसी रो उपयोग करो लेकिन सिर्फ आपकी सुविधा अनुसार करो वो दुरुपयोग मत करो। तो यही बात आ जाए कूलर री। अब कूलर है तो आप गर्मीना पानी डाल के ठंडी ठंडी हवा खाओ लेकिन वो कूलर भी साफ सफाई करनी जरूरी है। जथा कहो कि एसी आगे फिल्टर लागू रहे तो जो कूलर रे भी साइडों में ना चाटो लागू रहे तो वो कूलर रे जो चाटो हुई वो ना भी धूल मिट्टी तो वो माथे भी आवे तो वो भी सफाई करनी
0: तो कूलर में तो की होया करे के कूलर री सफाई ना ये गर्मी आवन से पहले ये सब चीजों कर लेनी चाहिए।
1: वो तो है लेकिन फिर भी
0: चलती गर्मी में भी अपर जम तो जाए करे तो कूलर ही जो घास होया करे आजकल तो घास चल रही है हेक चल रहे हनी कॉम पैड।
1: अच्छा
0: मतलब वो मधुमक्खी रे छत्ते दाई एक कागज रो रहा करे जिकर मनुष्य को लंबे समय तक चली आ गए तो यहाँ री सफाई जरूरी है। अगर यहाँ में धूल मिट्टी आड़ी रह से तो ए हवा नो खेच को नहीं पाओ तो यहाँ री साफ सफाई हो और प्रति वर्ष यहाँ बदल देना चाहिए जो घास हुए क्योंकि घास में भी आएगी मिट्टी जमे धूल जमे तो वो जम जावे जिकरे कारण सो हवा नो वेग वो खेच को नहीं पाओगे
1: जी।
0: और हनीकॉम भी पैड होया करे तो वो भी वो में भी धूल मिट्टी जमा करे वो ना प्रति वर्ष बदलने की जरूरत को नहीं है लेकिन 2-3 साल में बदल देना चाहिए। और जब कूलर ना नया ना चालू कराओ नयो या आप जो 6 महीना रख के रखियो और पछो गर्मी में आप चालू कराए तो एक बार वो अंदर ही जो मिट्टी है मिट्टी तो पानी के साथ में आया करे और नीचे जम जाया करे तो वो मिट्टी ने एक बार साफ सफाई करके और बाद में उन्हें नए सिरे से पानी भरियो जावे। पंप और मोटर जो है वेरी नियमित देख रेख होती रहे तो कोई शॉर्ट सर्किट होना चांस को नहीं रहे। और वायरिंग जो है कूलर ही ऐसा हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कूलर में जो पानी आवो भरा हुआ तो बुरी वजह से और पानी ये तरीके से भरा कि पानी बिखरे नहीं पंप मत है या कूलर है जो पंखे रो पंप है वो मोटर है वह मत नहीं पड़े क्योंकि पानी अगर वो लग से तो करंट भी और शॉर्ट भी हो सके तो खराब हो सके। बीजो जो विश्वसनीय ब्रांड होया करे वे रो कूलर पंखा लेना चाहिए तो वो की वे बिजली की बचत भी किया करे अपो सस्ता देख के बीजा ले तो आवे लेकिन वो की वे के ISI मार्क बिना वाली चीजों होया करे बिना ISI मार्क मतलब वो अपन बिजली की खपत जितनी होनी चाहिए उतनी देवे को नहीं और वो सु कई गुना ज्यादा अपरो बिल बता दे तो आप वो जगह 2 रुपया बचावे और बिजली रे बिल में आपो 4 पैसा अधिक दे दो तो बात एक ही पड़ेगा। और वो साथ ही की वे वो विश्वसनीय ब्रांड नहीं होने कारण वेरी मोटर और वेरी वारंटी ज्यादा रहवा को नहीं और बहुत जल्दी खराब जाओ जबकि विश्वसनीय ब्रांड एक बार पैसा लगे लेकिन वो अपर बरसों री चीज हो जाए और आपो की अपनी मेहनत री कमाई ना व्यर्थ जावन दो सिर्फ 2-4 पैसों लालच रहा से लेकिन अगर एक अच्छी चीज ले ली जाए तो आप पर बरसों तक वो चीज कमा जाए और वो में ज्यादातर समस्या आवे भी को नहीं मैं देखी है। तो अच्छी ब्रांड वाली चीज नो अच्छे नाम वाली ISI मार्के वाली चीज रो उपयोग करना चाहिए ताकि वहां पर बिजली की बचत भी करे और अपन सुविधा भी बराबर देवे और वेरे उपयोग करण से जो वे में जो तकनीक जो दियोड़ी वे एक तो मोटर जो होया करे तोम्बेरी कोयल वाली है तो तोम्बेरी कोयल वाली जब मोटर होया करे तो लंबी चलिया करे आजकल सस्ते रे चक्कर में एल्यूमिनियम री कोयल बना दी तो चले को नहीं बहुत जल्दी बल जावे और वेरे बलन से की वगैरह शॉर्ट सर्किट रो खतरो रह जावे कदे कदे चिंगारी भी लग जावे कदे आगरी पकड़ा जावे तो अपराओ दो पैसा अपरवा से नुकसान में भी कदे कदे हो सके तो ISI मार्को ईयर वास्ते जरूरी है क्योंकि वो भारतीय प्रमाणक ब्यूरो से प्रमाणित की ओड़ी चीज होया करे कि हाँ भाई ये चीज ये वास्ते चलने उपयुक्त है तो ईयर वास्ते ISI मार्को अपन हमेशा देख के चीज खरीदनी चाहिए ताकि वो अपर वास्ते कदे नुकसान हुआ। दूसरी बात है कि आप जब भी पानी भराए तो दिन भर चलते रहे पानी है तो गर्मी में की वे ज्यादा पानी टिकिया को नहीं खत्म बहुत जल्दी हो जावे लेकिन थोड़ा दिन बाद जब मानसून आसे नहीं और बाहर नमी होगी तो मच्छर पनपना चालू हो जाए और बीजा भी जीव जंतु छोटा छोटा पानी रे आसपास पनपया करे तो ऐडे में पानी ना नियमित बदलना जरूरी क्योंकि पानी रे एरिया में आएगी मच्छर आप लार्वा देवे अंडा देवे और पछे अमारी तादाद बदे तो पानी ना समय समय माते बदलते रहना चाहिए। पानी वर में रखोड़ नहीं रहे और मानसून आते आप की करे गए लापरवाही करे पानी ने वो छोड़ दा पछे बिना जरूरत रहे आप पानी लो पानी तो उपयोग करो कोनी और बाहर नमी होने कारण पानी जल्दी से सोखे भी कोनी आने गर्मी में तो सोख ले भी पानी जी तो मच्छर पनपन ही चांस कम रहे। लेकिन मानसून में आपो पूरा सोखो कोनी पानी भी सूखे कोनी अपने आप और आपो भी पानी का उपयोग कम करना चालू कर दे खाली पंखा चलाएगी काम चल रहा है तो ईयर वास्ते सावधानी कूलर ना उपयोग करते हुए जरूरी है और पूरी वायरिंग का विशेष ध्यान रखते रहना चाहिए क्योंकि पानी सु अगर टच हो जाए तो शॉर्ट होना जरूर खतरो रहा करे और बिना ISI मार्के आले अगर आप चीज लो तो वह में तो और ज्यादा खतरा बढ़ो रहा है। तो कूलर और AC ना उपयोग करते समय अपन एडी एडी सावधानी तो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि अपन कोई तरीके की शारीरिक हानि नहीं हुए और साथ ही पर्यावरण भी संतुलन आप बनाए रखो। तो नीतू बन आपको काफी लंबी चर्चा कर ली और मैं सखियों ने सुना से एक बढ़िया मीठो गीत और कुछ जरूरी संदेश।
2: टिफिन पैक करो राजू मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अभी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: विकसित

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10 लाख की लॉटरी
2: मुझे,
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो नीतू बन लंबो अंतराल रहे हो और बढ़िया मीठो गीत सुनियो और कुछ जरूरी संदेश भी सुनिया। हमें बात कर सो नीतू बन अड़े विषय जिको की सिर्फ अपर व्यक्तिगत जीवन न प्रभावित गुण करे बल्कि एक समाज नो भी बेहतर दिशा दे रहे।
2: अच्छा,
1: वो है विषय क्षमा करनो विषय। क्षमा करनो ही कड़ी चीज है जिको की हर एक बस में को
2: जी जी
1: अपो सबोरी जिंदगी में कदे न कदे तो अड़ो अवसर आवी जाए कि अपन लगे कि वो सामने व्यक्ति अपने साथ बहुत गलत व्यवहार कियो और अपन बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दिया है, बहुत ठेस पहुंचे है और अपन मन भी क्रोध सुग्रो भर जावे कि आपो को करें क्या है तो मिले तो आज यो कर दो यो कर दो, मतलब कई तरह रहा द्वेष मन में आ जाया करे कोई अपने साथ में गलत करे तो। और कई बार तो ए रंजिश रवे कि वो सदियों तक बरसों तक चलती रवे पीढ़ियों तक भी चलती रवे रंजिश
2: जी।
1: और एड़ी रंजिश हो रहा तो परिणाम आपो खुद देखिया है कि पीढ़ियों तक चलन वाली रंजिश केड़ी खतरनाक हो जाए और वो में पछे खूनी संघर्ष शामिल हो जाए। तो ए एक समाज वास्ते

0: एक संदेश को नहीं।
1: देखो हो सके कुछ लोग गलत हुए या हमारी नीयत गलत हुए, वो गलत नीयत रहे कारण अपोरा आपस में विचार मतभेद रहे करे या कोई चीज रवाज से लड़ाई झगड़ो जन सामान्यतया क्या रहे कोई जमीन रो या करे या कोई वस्तु रो या करे, बाकी चलते फिरते तो कैसे कोई विवाद हुआ को नहीं करे। आज कल की तारीख में देखो तो विवाद कड़ो हो सके स्कूटी में जाओ ते क्या कहना टक्कर मार गलती से लग भी जावे कदे कोई पग लग जावे कदे की हुए। देखो हालांकि मैं कहूँ के वाहन चलाते समय सावधानी पूरी बरतनी चाहिए लेकिन कई बार हो भी जावे तो वह मैं अगर सोमलन में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंच तो वो जगह मत छोड़ देना चाहिए क्योंकि जानबूझ के कोई भी कहना मारे को और प्रयास करे भी को नहीं कि कोई कहना चोटे करे लेकिन कई जगह मत रंजिशों चलते लोग जानबूझ कर भी है किया करिए। तो क्षमा है कैडी चीज है जो अगर मन में घर कर जावे नहीं तो व्यक्ति ने बहुत महान बना देते
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि आपो अगर मन में बैर भावना लेके रख सो या रंजिश लेके रख सो तो वे सुखी वे कि आपो खुदरो दिमाग हमेशा अशांत रह से और आपो दूसरी जगह मत दिमाग लगावानी जगह सिर्फ वही बातों मत दिमाग
0: जी सही बात है कि आप दूसरी जगह माथे दिमाग लगाने से हट जावे अपर दिमाग और सीधो बस वो मैंने जो है कि मैं मना हुए यहाँ कहो तो क्यों और म्यारे जो मन में ना है वो प्रति बहुत द्वेष की भावना आ जा से। यह बात सही है थोड़ी कि कहो भी है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। तो देखो नहीं अगर थोड़ो सी अपो गम खाए के और थोड़ी कैरी अगर कोई गलती है तो वो ना माफ करनो सीख जावो नी तो थो कहो कि समाज में बहुत अच्छो संदेश जासे। तो थोड़ी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। थोड़ी बात से हूँ पूरी तरह से सहमत हूँ कि भाई एक क्षमा जो व्यक्ति नो महान बनाए देवे क्योंकि अगर जब व्यक्ति क्षमा करनो सीख जासे नी तो उरे कारण उरे जो कीड़ा कार्य ऐसा नहीं वो ना भी लोग याद रख से। और बाकी देखो नी जथा कहो कि जीवन में ना घने उतार चढ़ाव आवी अपरो सामनो कभी कैस हुई कभी कैस हुई कोई बात ना थे छोटी सी बात ना थे बखेड़ो खड़ो हो जावी और लड़ाई तक पहुंच जावी रो तो ये लड़ाई में ना अगर आप थोड़ो सी केवे नहीं के मानसिक संतुलन खोए नहीं के मानसिक जो अपरो संतुलन है उन्हें स्थिर रख के थोड़ो सी सोचो कि अगर मैं उन्हें कुछ नहीं कहो उन्हें माफ कर दियो तो की हुई रो इस की घटी थोड़ी ना या म्यारो कोई ओहदो कम थोड़ी ना हो जासे। ए चीज थोड़ी सी अगर अपन मन में घर कर जावे नहीं हर व्यक्ति के मन में तो उनको समाज में ना जो कोई लड़ाई झगड़ा हो या आपसी द्वेष राग जो भी है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जावे। तो ये बारे में थे की कहना चाहो गुंजन में
1: गांधी जी भी यह बात कही है ये क्षमा कमजोर व्यक्ति को कर सके क्षमा करण री ताकत सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति में है। तो आप खुद ना शक्तिशाली मन सो तो आप क्षमा कर सक सो लेकिन अगर आप खुद ना कमजोर मन सो तो आप कदे क्षमा कम कर सको। तो आप खुद रे नजरिए से है देखो कि आप कमजोर हो या शक्तिशाली अगर आप कमजोर हो तो आप क्षमा कर ही नहीं पाओ कदे। तो खुद नो कमजोर साबित करना या खुद नो शक्तिशाली बनाना
0: देखो हर जगह मन में तो है जैसे को आपने शक्तिशाली समझे क्यों कमजोर
1: समझे शक्तिशाली हो से वही क्षमा दे सके और जो को कमजोर हो से वो क्षमा दे को नहीं पावे और वो क्षमा नो सोचनो ही दूर हो हमेशा वो रंजिश नो खेस तो चले जा सके। तो वो शक्तिशाली रो कौम है को नहीं शक्तिशाली रो कौम है छोटी मोटी चीजों नो
0: इग्नोर कर दो
1: हाँ किनारे करके आगे
0: बढ़ो।
1: तो आगे बढ़ने की जो नियत है वो अपना ये सुजमल से आप जब एक ही रंजिश न लेके बैठा रहे तो आपका दिमाग वो में रह से आप सोच सो के बारे में वेरी गतिविधियों ना आप नजर पर रख सो जबकि खुद ही क्रियाशीलता ना आप वो जगह में बैठा है
0: जी।
1: लेकिन अगर आप एक क्षमा करके आगे बढ़ सो तो अपन नई दिशाओं दिख से नई चीजों दिख से नई राहों दिख से अपन कुछ करण ली कुछ बढ़न ली नया नया जो लक्ष्य है वो अपन दिखाई दे से। लेकिन जब आप क्षमा नहीं करे तो आपको लक्ष्य सिर्फ वही रंजिश माते अटकोड़ो रहे कि ये नको का नुकसान पहुंचाऊ ये नी करो ये नको कर करो तो आपको लक्ष्य पूरा खत्म हो जाएगा। तो लक्ष्य जो है जिकी जगह आपने जिके दिशा में बढ़ना चाहिए वो लक्ष्य निर्धारित नहीं हो कि गलत दिशा में आपको लक्ष्य निर्धारित हो जावे और आप खुद रो वो जगह में नुकसान कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने वास्ते हमेशा क्षमा गुण है जो आपने धारण करके रखना चाहिए।

0: तो गुंजन मैम देखो कि तो बढ़िया जोड़ो गीत सुने आप और जी शोर हो गयो
1: देखो गीत तो बढ़िया सुनाया था और
0: तो।
1: आपो चर्चा भी आज अच्छी करी सकी, अच्छी अच्छी जानकारी दी।
0: जी
1: और जीवन रहा व्यक्तिगत जीवन ना जो पहलू है वो री आपो बात करी, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आई जे कि ये सो आप और खुद रो व्यक्तित्व रो विकास कर सो और साथ ही समाज नो भी बेहतर बढ़ाओ नो प्रयास कर सो, ताकि समाज में नकारात्मकता खत्म हो के एक सकारात्मक चीजों आगे आवे, ताकि लोगों री मानसिकता इन चीजों से निकल के कुछ क्रियाशील बनन री, कुछ रचनाशील बनन री, दिमाग में उमरे उपज आवे और वो आगे बढ़े और साथ ही समाज नो भी आगे बढ़ावे।
0: जी बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई जब तक अपने मन में ना रचनात्मकता नहीं आसे, क्रियाशीलता नहीं आसे, तो समाज का विकास होकर हो से, तो ए जो अपनी सोच है नी जो के भाई अपन एक दूसरे प्रति द्वेष वगैरह रखो उन्हें ही के पास है करो और एक तरीके से समभाव री भावना ले आवे और आपसी सौहार्द रखे, तो बहुत बढ़िया रह से। और ये सुखी है समाज का विकास है, साथ साथ में ना अपने आप देश का विकास भी हो से, और जब देश का विकास हो से तो भाई आपो सु बढ़िया सुखी पूर्ण हो से।
1: देखो मानव सभ्यता जब तक विकसित रहे से और मानव सभ्यता एक दूसरे के प्रति समर्पित रहे से तो वह सभ्यता रो विकास होना निश्चित है और
0: जी
1: बहुत तेजी से आगे बढ़ से। और
0: बिल्कुल
1: आप उम्मीद करें कि आप परी सखियों ने भी अपनी बातों पसंद आई है। अगली बार आप नई चर्चा और जानकारी के साथ सखियों ने मुखातिब हो सो। आज रही कार्यक्रम में सखियों सुली सो सीख, घना
0: ओके
1: घना
0: राम
1: राम राम।
0: राम।

0: चौकी का दौरा किया, राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमेरिका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इससे आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाकुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि मुन्नार कुमारकोम निलाक्कल कुमिली सबरीमला वर्कला और पोरमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा चंडीगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह है रेडियो गोल्डन सिटी एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 2:30 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदामनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

अंदाज तनम दीवाना बना कर छोड़ेंगे तेरे ये हसी अंदाज तनम दीवाना।

चंद्र भरे बादल ये उड़ता हुआ चल कहता है इशारों से, मौसम है पहाड़ों का आकर कहीं चल ये रंग भरे बादल।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: कर लूं, चार गुलो गुल
1: जब जब फूल खिले। इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, साथ ही नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्श ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई बहाने खिली कलियां,
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारे याद सताती हैं,
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमति फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है। और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस
2: करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। कि नहीं भाई अभी तो
1: क्या बात करने वाली है, आज
2: क्या बोलने वाली है,
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाली है।
2: देखिए जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी है खरीद के, राशन पानी लाना है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर।
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कह कर गए हैं कि मंजरी मेरे आने से ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम देखिए, मंदाकिनी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती है ना ये हर घर में होती है।
1: जी
2: कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर में भी ऐसी चीज,
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अभी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं। हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें, क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना तब
1: भागदौड़
2: मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो
1: वही अधूरापन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी।
2: मतलब कहने का मतलब है खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के लिए ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुटकुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपनी मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्रूज की सह संस्थापक है, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ लिखिए ये कि क्या वो खुद कान की कच्ची हैं, ये लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान की कच्ची मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
2: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी को एक व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है। हमारे अपने घर में कुछ लोग, हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ आपको पापा ने एक और आपने बात मान ली,
2: हाँ।
1: तो आप कान की कच्ची हो उसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिख कर भेजिए, हाँ। जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल सुनते ही ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए थे। हाँ। खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत
0: खत आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर

0: हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने, तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है, बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
0: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहर में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखे, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उसे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देखकर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा,
0: बिल्कुल
1: आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल। कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू करें।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

स्टोरी सेंट्रल की बात सभी सखी और सखाओं का स्वागत है। और देखिए एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को

0: करने का प्रयास करते हैं, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
1: बिल्कुल
0: तुम लोग छोटे हो, तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
0: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
1: हाँ।
0: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे भी मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
1: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
0: बिल्कुल
1: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में इतनी सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आचरही ते नर न घनेरे।
0: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार के बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है। तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

तेरा दोनों जहां है पागल, सामने तेरे है फीका वो हसी ताज महल, तेरी जुल्फों ने सनम दिल मेरा बांध लिया, तूने ऐ जाने सितम प्यार का जाम दिया।

ये तो दुनिया है यहाँ एक नहीं लाख हसी, जो अदा देखी है तुझ में वो किसी में भी नहीं। सामना तेरा जब होगा तो कयामत भी होगी, आंख जब तुझे मिलेगी तो मोहब्बत भी होगी, प्यार की

रात भी काले तेज परछाई है और सूरज ने तेरे गालों से चमक पाई है। गर तुझे देख ले कश्मीर तो शर्मा जाए, और फरिश्ता जो अगर देख ले ललचा जाए।

0: सूरत।
1: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना
0: हाँ
1: जी।
0: बिल्कुल,
1: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है ना।
0: बिल्कुल
1: तो ये सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंत्री ने बस छेड़ दी बात, है ना।
0: और ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है।
1: जी
0: जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है
1: तो चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं।
0: हाँ।
1: हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई। वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं।
0: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है। और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज की सह संस्थापक हैं। वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
1: जी। और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ। उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई।
0: बिल्कुल, उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लूज से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया।
1: जी, और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया। उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
0: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉपक्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था। शॉपक्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहाँ ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया, और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था,
1: और
0: लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी
1: जी।
0: और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में, और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी, विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत है। चलिए छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं।
0: तो मंजरी अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

उनकी जलोगे साथ मलोगे रूठ के हंसे हाँ देखो कसम से कहते हंसे हाँ उनकी जलोगे साथ मलोगे रूठ के हंसे।

के चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हंसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम के चलोगे हाथ मलोगे रूठ के

आप या ना आओ अपने ही लगम भी आप या ना आओ अपने ही लगम भी हम भी अकेले तुम भी अकेले कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे

0: कसम से क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे लो ठहर गए हम कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ
0: हाय देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ
2: हाँ तो मंत्री हम भी आपसे यही कहते हैं देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से देख लेना
3: लेकिन आपको पता है कि मंजरी अच्छी है
2: कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है
3: कान की अच्छी है भी नहीं और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्चे वाली आदत हो जाती है फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं वो जानने की कोशिश नहीं करता वो उसकी कहने पर ही चलते
2: विश्वास कर लेते
3: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए
2: ऐसे कान की कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
3: जी और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना तो मंदाकी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं
2: बिल्कुल और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए वो दमगम
3: बिल्कुल
2: कि आप खुद अच्छे बने है ना खरा सोना फिर आप दूसरे को परखें और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखी पना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से दूसरों की बातों से बैक बाइटिंग से दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति ये बहुत गलत बात है
3: बिल्कुल सही बात है
2: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना वो बहुत कान का कच्चा है कोई भी उसे भड़का सकता है सीता सबकी बातों में मत जाओ कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
3: जी और एक लिखते हैं कि बिना

0: समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और बाकी भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी इस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
1: बिल्कुल पड़ता
0: है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाग्नि जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे
1: मतलब अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर
0: उधर
1: उसकी बात सुन ली उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
0: बिल्कुल
1: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना, ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
0: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कहीं सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं, क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है, इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्ति को धूमिल कर देता, व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी,
1: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। और लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात को अपनी तरह खराब कर देते, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
1: मतलब ऐसे जो बातों की होती है दोस्तों के बीच में उसको भी वो
0: हटा देते हैं। मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना
1: मतलब
0: निकालने के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते
1: वो चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वही श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चे यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते
0: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
1: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जन्मासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जन्मासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे, तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। वो चार कितना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जन्मासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था और
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है, तो कंघा और शैम्पू नहीं है, तो बालों में तेल लगाना नहीं
1: है। वो जन्मासा होता था, दिखावटी दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उनका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की
1: लड़की वाले ही करते थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जन्मासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते हैं, पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जन्मासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: बिल्कुल, अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह के भी उनको
1: सुविधाएं मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है, तो उसमें भी जन्मासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं है, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था कि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन

0: स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदर पूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडली स्तर पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासी के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती है। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज मजाक उड़ाया जाता है जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था। लेकिन गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे,
0: जान होते थे। सही
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है। जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं तब जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात और खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है। यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बराती तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जनवासा ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जनवासा वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। अच्छी सी बात है। और जनवासा भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं बसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत
1: चूहलबाजी
0: टाइप की भी होती थी, थोड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई।
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्य किए जाते थे। तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते
1: हैं। बिल्कुल याद।
0: तो चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

जिसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये काजल तेरा, नैन बसे।

0: तो मंजरी मुझे तो लग रहा है कि जन्माष्टमी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जन्माष्टमी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर लिया, अंधेरा था चारों तरफ। तो इस तरह की हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जब भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी। इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जन्माष्टमी जिसे जन्माष्टमी भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जन्माष्टमी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान शौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए। हाँ। कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल जनवासा में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा है गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है। अब तो बराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जन्माष्टमी में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं। यहाँ जनजान अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनियां गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी की यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, हाँ। तो वो तो किसी और का बगीचा है।
0: हाँ, हाँ।
1: अब आम लगे हैं,
0: हाँ।
1: अब बराती लगे तोड़ने में,
0: हाँ, हाँ।
1: अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक जनवासी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं। और अब हम सुन लेते हैं प्यारा से गीत।
1: जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी है
0: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखी और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे आज फिर से ताजा हो गई ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

Saki, Saheli. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से

सबको मोहित किए हुए है। उन्होंने जब भी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई, फिल्म दम लगा के हईशा, फिल्म ओ माई गॉड, बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी हमें थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी,
1: बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: अलग है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी

0: नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं। अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं, जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है।
1: जी
0: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल है। मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है।
1: और इन
0: उन
1: रागों में
0: पे
1: वाद्य वृंद
0: वाद्य
1: बनाना
0: वृंद बनाना, वो भी
1: और
0: उनके
1: भी
0: चलन के
1: बनाना।
0: आधार पे।
1: जी
0: अब सारे गामा पादा निजा निदा पमा गदेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
1: 80 लोग,
0: हाँ,
1: ये मायने रखता
0: अस्सी
1: है।
0: आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
1: नगीने
0: नगीने हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के, अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं। उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं। और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे, हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM, सारे गामा
1: अच्छा, दोनों
0: पादा,
1: नोटेशन कर देते वो।
0: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे।
1: जी
0: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे 3 भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम 3 भाई हैं और 2 म्यूजिक में हैं, 1 म्यूजिक में नहीं है। तो
1: जी
0: मैं और पंकज नाथ जी, हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे। तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहां से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मुंबई इंडस्ट्री में
1: बुनियाद पक्की हुई।
0: बुनियाद पक्की हुई एक तरीके से, बोल लीजिए वो एक ट्रेनिंग भी थी
1: जी
0: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
1: मैं ये देख पा रहा हूं कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
0: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा
1: अच्छा।
0: होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता
1: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो
0: आदमी।
1: जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
0: हाँ, अभी आर्टिस्ट है,
1: हाँ
0: और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो तो
1: जी
0: और भी बदमाश
1: और
0: होता
1: भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
0: है। हम लोग करते थे
1: शर्मारे
0: बचपन
1: बता रहे
0: में। हाँ, थोड़ा सा शर्मा रहे, बट हाँ बदमाशी करते थे।
1: बगीचों से आम चुराए, चोरी से
0: बहुत
1: फिल्में
0: चुराए,
1: देखी है।
0: बहुत चुराए हमने, आम चुराए, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है, प्रिंसिपल
1: ओहो
0: को भी थोड़ा परेशान किया है।
1: थोड़ा
0: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
1: घर शिकायत भेज दी।
0: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया
1: अरे बाप रे।
0: था।
1: फिर
0: फिर पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
1: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो
0: आपने
1: खतरनाक
0: पकड़
1: वाला किया
0: लिया,
1: होगा।
0: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
1: जी जी
0: मैं
1: जी
0: बचपन में भी नहीं पकड़ा था, मुझे तो टीचर ने, इसको कर्मा बोलते हैं।
1: वापस आ
0: मुझे
1: गया।
0: लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ,
1: जी
0: तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं आपको
1: जी
0: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
1: अच्छा।
0: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहां के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट
1: जी
0: थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे,
1: और जमाना भी सख्ती का था।
0: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे
1: कहीं और पहुंच
0: नहीं।
1: गए।
0: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर अब खेलने चले गए,
1: जी
0: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं।
1: हाँ।

0: कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं।
1: जी, ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
0: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि वो एक करेक्ट एज है
1: जी
0: अनुशासन में रहने का। जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
1: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगी परोड़े आवी खुशियों संगे नावी, हर घाए हयु हाय हाय।

हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल।

0: पिरोना है, आशा के मोती सासों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हम पढ़ोना है, शहनाई शहनाई शहनाई
1: रस रचिलो।

अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा

0: दादा जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बात है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओ हो हो, गजब।
0: ही वॉज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी, वो मिलिट्री में थी। और जी, इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: शहनाई और इस बांसुरी को बोलते त्रिपुरा बांसुरी,
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं।
1: जी।
0: और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है
1: नॉर्मल
0: वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है।
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे। हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि रात भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है। और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के।

0: वाह
1: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूं कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
0: बिल्कुल
1: और
0: बचपन
1: वो
0: की नींद,
1: चार साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
0: बिल्कुल
1: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न एंड ब्रॉट इन दिल्ली,
0: जी,
1: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
0: खतरनाक जी।
1: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
0: जी
1: हूँ।
0: जी
1: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी तो ये बांसुरी बजाते थे।
0: अच्छा।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30-5 बजे से वापिस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल वैसा था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा,
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से ही डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब उम्मीद से आ रही, उनसे उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो, तो सारी रात जागना है,
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है,
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, दोस्त सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल का रियाज होता था दादाजी के साथ भी, तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही
1: उसी रियाज करते हुए,
0: अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या
0: पर
1: बात।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रेटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी, और फिर संगीत सिखाया, और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूं कि ऐसे घराने का बच्चा हूं और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूं। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो, जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल
0: ये और मैं एक ही है। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूं और एक साज की सेवा कर रहा हूं, कृष्ण भगवान के साज की सेवा कर रहा हूं, जिन्होंने इस साज से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाए, और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: देखो ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती सीधी बांसुरी,
1: हाँ
0: आपने देखी होगी ऐसे, शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी,

0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ,
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे, इसका ये पंचम का हुल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूं मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीर मध्यम का
1: है, हाँ, है। बिल्कुल है,
0: ठीक है
1: आखिर में,
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से देखा है सर। आप ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: हाँ
0: है ना
1: जी,
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी,
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: बिल्कुल सही,
0: वो देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में, दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं,
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए।
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो उसे नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है,

वाह वाह वाह वाह, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत कमाल का गया। ये गाना सुनते हैं।

0: जी आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है,
1: शिशु होता है वो। तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितनी भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में क्या था, और

0: जो स्टेज परफॉर्मेंस थी वो 5 साल की एज में थी।
1: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
0: वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने उस वक्त। क्या था वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया। तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया,
1: जी जी जी,
0: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
1: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
0: हाँ, काफी छोटी थी। तो उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
1: अरे बाप रे।
0: हाँ,
1: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक? गजब,
0: वो ये आशीर्वाद है।
1: जी जी जी,
0: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या करते हैं? सवाल
1: पीने जाई
0: जी,
1: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
0: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
1: जी
0: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
1: जी
0: काम करने लग गया था, तो फिल्म से नाता, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं। मेरी माताजी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माताजी और दादी जी वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर की मिठाई। तो पहले बाहर से नहीं आता था मैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर।
1: और वो ठेठ बनारसी,
0: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
1: गजब।
0: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता था। उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं। तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं, अब जैसे रसिक बल्मा,
1: जी जी,
0: अब बहुत सारे लोगों वो गाना ही नहीं पता।
1: हाँ हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना।
1: जी,
0: तब का सुना हुआ है।
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वो भी मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूँ, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
1: होली आई रे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी,
0: तो वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
0: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल।
0: ओहो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त के मूवीज से हम
1: जी।
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त की। फिर ज्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स, प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम लोग, हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
1: अच्छा,
0: बहुत शौक।
1: क्या बात है।
0: एंड आई वाज द बेस्ट प्लेयर।
1: अरे वाह,
0: इन द टीम। यस।
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर। अच्छा। ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है।
0: हाँ।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सिर्फ बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेल के थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहा है, दिन भर बच्चा है, कहा मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगाया था।
1: हाँ,
0: तो ये एक

0: अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: उनके
0: जैसे
1: मुकाबले।
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है, तो
1: बिल्कुल।
0: वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है, पर घर वाले तो मजा,
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती
0: हाँ,
1: होगी।
0: दो महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही दे
1: इशारा
0: दिया था,
1: किया।
0: इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे,
1: अच्छा, ये कोर्स से बाहर का सवाल है।
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस,
1: वापस ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते
0: हाँ, स्टूडियो चलते ना तो मजा
1: स्टूडियो चलते आकाशवाणी
0: आता
1: की गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: हाँ, वहां पे
1: उनके
0: क्या
1: साथ जाते होंगे आप स्टूडियो।
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने, और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक,
1: हाँ
0: जब हम उनके साथ जाते थे, तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी, अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, वो एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर, दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुरा चलाया
1: जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आते थे, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए, तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी है। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे, तो पिताजी कभी कभी अपने साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी, तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। आप सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है
1: हाँ, कंपोजिशन।
0: कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया, तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर, के हम जब जाते थे पिताजी के साथ, तो वहां जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे, उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था, वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी,
1: जी
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें हैं, ये आप घर पे नहीं सीख सकते,
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सब सबका ख्याल रखना, और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर में, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो,
1: जी,
0: तो पूरा एक हमारा चक्र घूम
1: चक्कर
0: जाता।
1: लगता
0: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं, वो जो वहां पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो, और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे, तो सब अपनी अपनी चीजें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए, तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि कि ऐसा नहीं कि

0: वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड मेक द
1: चेंजेस अकॉर्डिंगली,
0: मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली, एंड वो हमेशा ही रिस्पेक्ट करते थे उस जेस्चर का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहां पे मैं और जब मैं हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो, कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है,
1: हाँ
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए,
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इंप्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
0: था। वही था वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी युवा साथियों को युवा पुष्पेंद्र भौरा का युवा नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व बौद्धिक दिवस पर। साथियों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस दुनिया भर के लोगों को साथ मिलकर यह विचार करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है कि कैसे संतुलित बौद्धिक और संपदा प्रणाली वैश्विक कला जगत को फलने फूलने से मदद करती है और मानव प्रकृति को गति देने वाले तकनीकी नवाचार को सक्षम बनाती है। साथियों, विश्व बौद्धिक वैसे तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता है, लेकिन 26 अप्रैल को हमें एक विशेष अवसरों का स्मरण करने के लिए बनाते हैं। मानव क्षमता और बुद्धि द्वारा निर्धार रचना बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत आती है, जिसमें कुछ को छू कर अनुभव कर सकते हैं, कुछ को देख कर, तो कुछ को केवल जानकारी में होना अथवा अनुभव करने, जैसे कि तस्वीर, कविता, लेख, कोई फिल्म या कहानी, वस्त्र, पैटर्न या किसी प्रकार के द्वारा बनाई गई कोई चीज़। अब प्रश्न उठता है कि भूमि, मकान आदि वस्तुओं के हर देश में कानून होता है, तो कई कृति, रचनाएं लिखने के लिए, बनाई के लिए कोई पाक कला की विधि अगर पूर्णतः वास्तविक रूप से आपकी ही है, तो इसे दूसरों को बनाए देने जाने की प्रमुख कारण के लिए क्या विशेष तौर पर कार्य किए जा सकते हैं। विशेष तौर पर हम आपकी यह पता होगा कि कानून सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन समझिए कि बौद्धिक संपदा का क्षेत्र का दायरा बहुत विस्तृत है। इसके अंतर्गत बहुत सारी, यानी कि लगभग हर बड़ी बातें, वस्तुएं आती है जो अपनी खुद की रची हो। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे, उससे पहले चलते आपको सुनाते हैं ये संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

साथियों, हम सुनते फिल्म आरजू सब तेरे दिल में, जय कुमार सन और गए हैं। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं बागवानी के क्षेत्र में। दोस्तों, भारत का बागवानी क्षेत्र फल, सब्जियां, फूल, औषधि और सुगंधित पौधे और बागबान फसलें शामिल है। जैसे जैसे भारतीय इस रूपांतर हो रहे, बागवानी क्षेत्र में भी एक तेजी से बढ़ने वाला उप क्षेत्र बनकर उभर रहा है। वैदिक उत्पादन में स्थान भारत सब्जियों में दूसरे स्थान पर है, चीन की बात। उसके साथ ही बागवानी क्षेत्र में 33% योगदान है। 2023 से 24 में बागवानी उत्पादन 355 मिलियन टन से अनुमानित किया गया था। भारत सब्जियों में 14वें स्थान पर और फलों में 23वें स्थान पर। फलों की फसल बाद हानि लगभग 8.1% और सब्जियों की 7.3% है। वे कुल फसल बाद हानि के 37% बनती है, जिससे वार्षिक मूल्य 1.53 ट्रिलियन रुपये है। अंतिम उपभोक्ता मूल्य के साथ ही केवल 30% प्राप्त कर देते हैं। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं।

साथ में अभी सुने थे फिल्म बधाई बधाई से ये काली काली आंखें, जिसे जगह कुमार सानू और अलका याग्निक ने संगीत दिया है अरुण मलिक ने। दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा, भारत में मदरसा शिक्षा प्रणाली पर। दोस्तों भारत सरकार द्वारा समय समय पर मदरसा सुरक्षा को लेकर कदम उठाए जाते हैं। मदरसा के आधुनिकरण के लिए तय किए गए संस्थानों विकास के लिए 1998 मदरसा गुणवत्ता और शिक्षा के लिए योजनाएं यानी कि SPQED का प्रारंभ किया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक विषयों से जोड़ना, जिससे मदरसा तथा मकतबों जैसी परंपरागत संस्थाओं को पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी आदि शुरू किया जा सके। मदरसा संचालन समिति का गठन किया जाना और इसके साथ ही पंजीयन को लेकर आवेदन करना भी अध्यक्ष से सचिव की ओर किए जाने वाले प्रावधान के साथ है। इसी बिंदु को ध्यान रखते हुए शोध के साथ ही आधुनिक कार्यक्रम को मदरसों में संचालन और प्रबंधन करते हुए प्रभावों के साथ ही अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अपनी चर्चा को हम इसी तरह रखेंगे, उससे पहले ही सुनते हैं ये गीत।

साथियों, अभी हम सुने थे फिल्म दरबार से ऐसी मिली निगाहें, जिसे कुमार सानू का एक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। साथियों, अब समय हो चला है अपने युवा दोस्त पुष्पेंद्र बोहरा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए सुनिए हमारी सांध्य सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

शाम 6:30 पर श्रोता सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे हमारे जयपुर केंद्र से। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:05 पर श्रोता सुनेंगे रामचरितमानस।

शाम 6:15 का समय होगा, भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा वंदना। शाम 7 किसान वाणी कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे, किसान भाइयों का अपना पसंदीदा और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:30 पर आज हम श्रोताओं को सुनवाएंगे बांसुरी जुगलबंदी राग मिश्र पीलू। कलाकार होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। रात्रि 8 श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम श्रोताओं को सुनाएंगे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें। रात्रि 9:15 पर श्रोता सुनेंगे फिल्म संगीत। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 शाम में गजल कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार होंगे चंदन दास। रात्रि 10:30 पर श्रोता सुनेंगे विभागीय कार्य और विशेष फिल्म संगीत की प्रस्तुति। रामजीलाल मीणा के निर्देशन में, प्रस्तुतकर्ता विक्रम सिंह। अभी आप सुन रहे थे हमारी शांति सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं लीजिए सुनिए रामचरितमानस।

श्री रामचरित मानस का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है अहल्या उद्धार का। जनकपुर से सीता स्वयंवर का निमंत्रण पाकर मुनि विश्वामित्र दोनों कुमारों को राजा जनक का धनुष यज्ञ दिखाने ले चले। मार्ग में एक सूना आश्रम दिखाई पड़ा जहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। वहां एक शिला खंड पड़ा था जिसके विषय में श्री राम की जिज्ञासा सुनकर ऋषिवर ने उन्हें गौतम पत्नी अहल्या के अभिशप्त होने की कथा सुनाई और बोले, ये पत्थर की देह धारण किए युगों से बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की धूल की प्रतीक्षा कर रही है। हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम के चरण का स्पर्श पाते ही तपोमूर्ति अहल्या अपने सुंदर नारी रूप में हाथ जोड़े प्रकट हो गई। अत्यंत प्रेमवश उसका शरीर पुलकित था और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना।

0: योगी निर्धन निर्बल थारे आगे शीश झुकावे
1: आगे शीश झुकावे।
0: भूत पिशाच निकट नहीं आवे जो थाने नित ध्यावे।

0: दुख हरो दारिद्र हरो ते कष्ट हरो बालाजी
1: हरो कष्ट हरो बालाजी
0: रोग शोक सब दूर करो ते सुखी करो बालाजी
1: सुखी करो बालाजी
0: हमें भाग्य दागी।

0: पवन पुत्र है राम दूत थारे सारी दुनिया आवे
1: थारे सारी दुनिया आवे
0: थारा दर्शन करे चाव से मही।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: खाने पीने की चीजों, मुन्ने की दूध की बोतल और घर की अन्य चीजों पे बैठ के उन्हें अशुद्ध नहीं करेंगे, बीमारियां नहीं फैलाएंगी।
2: ये बात तो है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
1: तो अब सोचिए माँ जी।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों के लिए भर्ती कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित, कई स्थानों पर रात का पारा भी 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलाकर चतुष्कोणीय ग्रिड तैयार करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी भी खतरे से निपटने की संयुक्त जिम्मेदारी इन सभी की होनी चाहिए। श्री शाह आज बीकानेर के पास बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर आयोजित प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चतुष्कोणीय ग्रिड के माध्यम से ही सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकता है।
4: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
3: गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए चलाए जा रहे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए सीमा पर स्थित गांव के लोगों को भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 महीने में कर दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि राजस्थान में 1,096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनने से न केवल बीएसएफ की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र के नागरिकों और युवाओं से लगातार संवाद कर उन्हें सीमा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर बल दिया।

0: शाह ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से देश के सुरक्षा तंत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया है।
1: सेना को आधुनिकीकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा पर तैनात जवानों का उत्साह वर्धन करते हुए देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। गृह मंत्री ने बीकानेर में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगले वर्ष अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां से उड़ानें संचालित हो सकेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर आज नई दिल्ली में हुई बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को कोटा एयरपोर्ट पर ही इमिग्रेशन संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री बिरला ने पुराने एयरपोर्ट के स्थान पर एक फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। इस बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोटा के संभागीय आयुक्त, कोटा बूंदी के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि 1088 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहा ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। एयरपोर्ट का रनवे लगभग 3 किलोमीटर लंबा होगा। इस रनवे पर दुनिया के बड़े एयरक्राफ्ट भी आसानी से उतर सकेंगे। एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता लगभग 20 लाख यात्रियों की होगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रदेश की 3 विभूतियों को बधाई दी है। श्री बागड़े ने कहा कि इन हस्तियों के सम्मान से पूरा राजस्थान गौरवान्वित हुआ है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66 विभूतियों को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। इनमें प्रदेश की 3 हस्तियां, सामाजिक सेवा और लोक कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने के लिए स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, लोकवाद्य भपंग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 18 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा के सुगम संचालन के लिए विभिन्न विषयों की परीक्षाओं को 4 ग्रुप में विभाजित किया है। विषयों और परीक्षाओं की तिथि की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। गौरतलब है कि ये परीक्षा 10 विषयों के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। प्रदेश में किसानों को नकली और अमानक बीजों से बचाने के लिए कृषि विभाग की ओर से आज बीकानेर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अन्य अधिकारियों ने अलग अलग जगह नकली बीज बनाने वाली 14 फैक्ट्रियों में छापेमारी की। चौमू स्थित एक बीज कंपनी में छापेमारी के दौरान श्री मीणा ने दावा किया कि कंपनी में गुणवत्ताहीन मूंगफली के बीज की पैकिंग की जा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार नकली बीज बनाने और बेचने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी बुवाई सत्र के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

0: जयपुर जिले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही परामर्श और आवश्यक रेफरल सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस बीच आज महिलाओं और बालिकाओं में एनीमिया की दर कम करने के लिए शक्ति दिवस आयोजित किया गया। हर मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस के दौरान अस्पतालों में बालिकाओं और महिलाओं की हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है, साथ ही एनीमिया के उपचार के लिए आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और अब मौसम। प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों के कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। दिन के साथ साथ रात में भी पारा सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। फलोदी और बीकानेर में 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बीती रात कोटा, बीकानेर, संगरिया, करौली और दौसा में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। झुलसाने वाली गर्मी और तेज धूप के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित रही। चूरू में भीषण गर्मी से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बाड़मेर और जैसलमेर में भी लगातार जारी लू से लोग बेहाल हैं। भीषण गर्मी और लू से बचाव के प्रबंधों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बिजली और पानी की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो, और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने कल भी तेज गर्मी और गर्म हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं 28 मई से प्रदेश के कुछ भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों के 132 अतिरिक्त डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये बढ़ोतरी जून माह के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण रेल मार्गों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे यात्रियों को प्रतीक्षा सूची की समस्या से राहत मिलेगी और यात्रा अधिक सुगम हो सकेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी। वहीं हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर काम करने पर जोर दिया। अगले साल दिसंबर से व्यावसायिक उड़ानों के संचालन के लिए तैयार होगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ अध्यापक के 6,500 पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी किया। और प्रदेश के उत्तरी, पश्चिमी और कुछ पूर्वी इलाकों में लू के असर से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख जितेंद्र शर्मा ने तैयार किया है। श्रीगंगानगर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव के हालात और अधिकतम

0: तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंचने से लोग बेहाल हो रहे हैं। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी से राहत के लिए लोग शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। नगर परिषद के अलावा लोग खुद के स्तर पर भी छिड़काव कर रहे हैं। वहीं भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पीने के ठंडे पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही ORS की पैकेट बांटे जा रहे हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। गंगा दशमी के मौके पर जिले में कल से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शिवपुर हेड पर रखा गया। जिला कलेक्टर अमित यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत वर्षा जल संग्रहण और पानी की बचत के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां रखी जाएंगी। इसके अलावा स्वच्छता, श्रमदान, जल संरक्षण शपथ और पौधरोपण भी किया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम में किसानों से सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग की अपील की गई। साथ ही उन्हें डिग्गी निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिले में पारंपरिक कुओं, बावड़ियों और तालाबों की भी अभियान के तहत साफ सफाई की जाएगी। वहीं विभिन्न औद्योगिक समूहों, भामाशाहों और नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाएगा। जल संकट से निपटने के लिए इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ये प्रयास जल आत्मनिर्भरता और हरित राजस्थान बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। प्रदेश के सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त पिछले दिनों सूरतगढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने गंगानगर के लिए सहकारी बैंक की रजियासर शाखा में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा सहायता राशि के चेक सौंपे गए। कार्यक्रम में श्री दत्त ने सहकार से समृद्धि योजना के नवाचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने सहकारिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्रीगंगानगर में ACB ने घड़साना थाने के SI रामेश्वर लाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपी ने ये रकम परिवादी से पिछले साल दर्ज एक मुकदमे में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी। बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में अब तक 3,000 से ज्यादा पात्र किशोरियों को ये टीका मुफ्त लगाया जा चुका है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों से 14 वर्ष की बालिकाओं को ये टीका लगवाने का आग्रह किया है। आशा सहयोगिनियां और ANM भी घर घर जाकर लोगों को इस टीके के बारे में जागरूक कर रही हैं। श्रीगंगानगर के युवा क्रिकेटर मानव सुथार का भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों की ओर से मानव के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनोद सहारा ने उनकी इस शानदार उपलब्धि को जिले के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। मानव को क्रिकेट की बारीकियां सिखाने वाले कोच धीरज शर्मा ने भी उनकी इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं रांची में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन कप में जिले के रावला क्षेत्र की एथलीट कुलविंदर कौर ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए कुलविंदर ने 57 मीटर 76 सेंटीमीटर दूर हैमर फेंक कर ये उपलब्धि हासिल की। पुलिस ने श्रीगंगानगर में ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5 अवैध हथियार और भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने समीजा कोठी इलाके में ये कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि मामले में तस्करी नेटवर्क की जांच की जा रही है। फिट इंडिया मिशन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान के जरिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। इसी के तहत दौलतपुरा से क्यू हेड सीमा चौकी तक साइकिल रैली निकाली गई। BSF के जवानों और अधिकारियों के साथ इस रैली में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी भाग लिया। क्यू हेड पोस्ट पर रैली के समापन पर योग सत्र रखा गया। इसमें प्रतिभागियों को योगाभ्यास करवाया गया। इसके साथ ही श्रीगंगानगर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता कानियों मिलर काम करण माथे जोर दिनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाओं आवता साल दिसंबर उड़ाना शुरू हैला। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी किन्नो। और प्रदेश का कई हल्का माए लू रो कोप कई थोड़ा रात्रि भगति पारो 32 डिग्री सेल्सियस ने पार किन्नो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावट सारू बीएसएफ फौज प्रशासन और जनता ने मिलार ग्रिड बनावनो घणो जरूरी है। श्री शाह आज बीकानेर के ने बीएसएफ री सांचू पोस्ट माथे राखी जा प्रहरी सम्मेलन माए बोल रहा है। वह कहो कि इन ग्रिड रे जरिए सरहद माथे रा खतरा रो पूरी ताकत मुकाबलो करियो जा सके है।
1: हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़े और ये बीएसएफ सेना और जागरूक नागरिक ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते।
0: श्री शाह सरहदी हलका ना विकास सारू चलाया जा रहा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम रो जिक्र करता था का कहो इरे जरिए सरहद माथा बसोड़ा गांव रा लोगा नई केंद्र और राज्य सरकार री जनता रा भलारी योजनावा रो फायदो मिल सकेला। वह कहो कि सरहदी हलका माए ड्रोन न खत्म करण री मशीना बनावन रो कारखानो लगावन रो काम 6 महीना माए शुरू करतियो चावेला। गृह मंत्री कहो कि प्रदेश माए 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनवाऊ बीएसएफ रो सुबीतो बधवा सके सरहदी हलका रो जुड़ाव भी मजबूत बनेला। गृह मंत्री सरहद 50 किलोमीटर अंदर ताई रा हलका री जनता और नौजवानों लगातार बातचीत कर और वहां माए सरहद री हिफाजत जुड़िया मुद्दा ना बारा माए जाग जगावन ने जरूरी बतायो। श्री शाह कहो कि साल 2014 पाछे फौज और अर्ध सैनिक बलान ने और मजबूत बनावन सागे आतंकवाद रे खिलाफ करड़ो रुख अपनाई चियो है।
1: सेना को आधुनिकरण हो रहा है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई।
0: इनो पहले गृह मंत्री सरहद माथा तैनात जवाना रो उमाव बधाता थका देश री हिफाजत माए मारा योगदान री सराहना कीनी। ई मौके वे सरहद माथे बनी चौकियां माए महिलाओं सारू नुवी बनाई जी 14 बैरकां ने इलेक्ट्रॉनिक तरीका जनता ने सौंपी। गृह मंत्री बीकानेर माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सागे प्रशासन और पुलिस रा आला अहलकारा हुई बातचीत कीनी। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डो बनावन रो काम आवता साल अक्टूबर महीना ताई पूरो कर लियो जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला री सदारत माए आज नई दिल्ली माए हुई मीटिंग माए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रा अहलकार आ जानकारी दीनी। ये पाछे वठे जहाज उड़ान भरन लाकेला। हवाई अड्डाऊ दिसंबर 2027 ताई नियमित हवाई सेवा शुरू है जावेला। लोकसभा अध्यक्ष जूना हवाई अड्डा रिठौड़ एक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोलन रे बारे माए विचार करण सारुई कहो। ध्यान जोग है कि 1088 एकड़ हलका माए बन रहा ई ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा रो रनवे 3.2 किलोमीटर लंबो फैला। ई हवाई अड्डा हर साल 20 लाख मुसाफिर उड़ान भर सकेला। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पद्मश्री नवाजी जी प्रदेश री तीन विभूतियां ने बधाई दीनी है। श्री बागड़े कहो कि आ हस्तियां रा मानु राजस्थान रो माथो ऊंचो फियो है। ध्यान जोग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल 66 विभूतियां ने राष्ट्रपति भवन माए पद्म अलंकाराओं नवाजी ही काम आए।

0: राज्यराज समाज सेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज भपंग ने दुनिया माए ओळखाण दिरावण वाला गफरुद्दीन मेवाती जोगी और अलगोजारी मीठी धुन दुनिया भर माए पुगावण वाला तगाराम भील रो पद्मश्री पुरस्कार देर मान करी जो हो। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC माध्यमिक शिक्षा विभाग माए 10 विषया माए वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती रो कार्यक्रम जारी करती नो है। बोर्ड रा सचिव बतायो का इम्तिहान 12-18 जुलाई ताई लियो चावेला। न्यारा न्यारा विषया री परीक्षावा ने 4 ग्रुप माए बांटी ची है। प्रदेश माए किसाना ने नकली और अमानक बीजाऊं बचावन सारू कृषि विभाग बीकानेर सीकर जोधपुर और जयपुर माए आज खास अभियान चलायो। इन दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अहलकारा सागर मेलर कथित नकली बीज बनावन रा 14 कारखाना माथे छापा मारिया। कृषि मंत्री चोमूरी एक बीज कंपनी माए छापा मारी रे दौरान कंपनी माए घटिया मूंगफली रा बीज री पैकिंग रो दावो कीनो। डॉक्टर मीणा कहो के सरकार आवता बुआई सत्र सारू किसाना ने बेहतर गुणवत्ता वाला प्रामाणिक बीज मुहैया करावनो ते कीनो है। तंबाकू रा गलत नतीजा ने बारा माए जनता माए जाग जगावन रा मकसद हूँ जयपुर जिला माए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग री ओर खास अभियान चलायो जा रियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रवि शेखावत बतायो के अभियान रे जरिए लोगा ने तंबाकू छोड़ बारी सीख देवन सागे इनु जुड़ी राय और जरूरी सेवावां मुहैया कराई जावेला। 31 मई ने मनाया जावन वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस रे मौके सगला आयुष्मान आरोग्य मिंद्रा माए खास कार्यक्रम रख्या जावेला। इबीचे महिलावां और टाबरिया माए खून री कमी री परेशानी कम करण सारू आज शक्ति दिवस मनाई चियो। इन दौरान अस्पताल माए महिलावां रा शरीर माए खून री जांच सागे इन री कमी रो इलाज करी चियो और आयरन री गोलियां दी री ची। अरब मौसम प्रदेश माए नैरी नैरी ठोड़ा लू बाजणो जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो है। राज्य रा आतुणी उत्तराद और उगनी जिला माए आज ही पारो 44-46 डिग्री सेल्सियस या इनो ऊंचो दर्ज करी चियो। श्री गंगानगर माए 47 जबकि फलौदी और बीकानेर माए 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज करी चियो। रात्रि भगत ही तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। बीती रात कोटा बीकानेर सांगरिया करौली और दौसा माए रात रो तापमान 32 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। चूरू माए पड़ रही जोरदार गर्मियों लोगा ने घनी परेशानी रो सामो करनु पड़ रियो है। बाड़मेर और जैसलमेर माए लगातार बाज रही लू हाल बेहाल है। इबीचे भयंकर गर्मी और लू बचाव रा प्रबंध रो जायजो लेवन सारू गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग माए अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ये पाछा खबरनवीसा सागे बातचीत करता था कम वे कहो के अहलकारा ने बिजली पानी री पूर्ति बनाई राखन रा हुकम दिया चिया है।
1: जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप बिजली उपलब्ध हो इसके लिए विभाग पूरे तरह से प्रयास कर रहा है और मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी ही बिजली विभाग आज बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेगा, पानी की आपूर्ति सुचारू हो और अन्य विभागों को भी निर्देश दिए हैं जनता के प्रति जवाबदेह होकर उनकी समस्याओं का निदान समाधान सुनिश्चित करें।
0: मौसम केंद्र जयपुर काली मौसम सूखो रेवन सागे उन्नो बायरो बाजन रा आसार जताया है। इबीचे 28 मई प्रदेश माए कच्छे कच्छे आंधी बारिश रेवन री संभावना है। गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरां रा सुविधा सारू उत्तर पश्चिम रेलवे री 52 जोड़ी गाड़ियां माए 132 और डिब्बा जोड़िया जावेला। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ बढ़ोतरी जून महीना माय करी चावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत आज 15 दिन ताई ऑनलाइन तरीका अर्जी दी जा सके है। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत काल पाली माई बतायो हो के ई योजना रा तहत रेल और हवाई जहाज रे जरिए 56,000 बुजुर्गा ने मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। आम

0: आयु 50,000 यात्रु रेलगाड़ियों और 6,000 बुजुर्ग हवाई जहाजों सफर करेला। आईपीएल क्रिकेट रा ई सीजन रो पहलो क्वालिफायर मुकाबलो आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस बीच खेलो जावेला। अब थोड़ी देर पछे धर्मशाला माए फेवन वाला मुकाबला माए जीतन वाली टीम सीधी आईपीएल 2026 रा फाइनल माए पूग जावेला, जबकि हारबा वाली टीम ने एक और मौको मिलेला। काल मोहाली माए खेलिया जावन वाला एलिमिनेटर मुकाबला माए राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमी सामी भैला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा तंत्र ने पूरी तरह अजय बनावन सारू BSF फौज प्रशासन और जनता कानून मिलर काम करण माथे जोर तीनो। कोटा बूंदी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डाओं आवता साल दिसंबर व्यावसायिक उड़ाना शुरू है जावेला। RPSC वरिष्ठ अध्यापक रा 6,500 ओहदा माथे भर्ती सारू परीक्षा रो कार्यक्रम जारी कीनो। और प्रदेश रा कई हलका माए लू रो कोप श्री गंगानगर माए 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करीचियो। इसागी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय शाम के 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए किसान भाइयों का अपना पसंदीदा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम किसान वाणी।
2: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी सुनने सभी श्रोताओं, लालजी भाई का गणागणा, राम राम। दोस्तों, आज है मंगलवार और आप प्रत्येक मंगलवार न कृषि संबंधी, कृषि कार्य पर्यवेक्षक या कृषि से जुड़ रहा व्यक्ति से आप बातचीत करें। तो आज अपने स्टूडियो में पधारिया है डॉक्टर दिलीप कुमार जी डांगी, जो कि वैज्ञानिक है काजरी में। आज वो अपन किसानों जो कुछ समस्याओं है, या किसान कोकर खेती बाड़ी करे, गर्मी में पशु कोकर देखभाल करे, या समन्वित कृषि प्रणाली कोकर अपनावे, या मिट्टी पानी रिचार्ज कोकर करा, उस बारे में अपन आज जानकारी दी है और भी अपन कई जानकारी दी है। तो सबसे पहले दिलीप कुमार जी रो अपने स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल है कि भी किसान भाई है जो को IFS मतलब समन्वित कृषि प्रणाली,
6: हाँ जी,
5: कोकर अपनावे।
6: देखो भाई, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो आपका जैसलमेर है, यहाँ पे जैसलमेर में मैंने ये

0: एक है कि यहाँ पे खेतों में एक तो यह होता है नहरी क्षेत्र के खेत है, दूसरे यहाँ पे खड़ीन है, तीसरे यहाँ पे नॉर्मल खेत हैं। तो नॉर्मल खेत में एक मगरा होता है और एक नीचे जमीन होती है। नीचे जमीन में आप फसल उगा सकते हो और जो मगरा होता है उस मगरे का आप क्या करोगे, ये किसान नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो आपका पशुधन है, पशुधन में यहाँ पे ज्यादातर थार पार्कर गाय होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है और ऊँट होते हैं। तो इन जितना भी ये यहाँ पे जितना भी पशुधन है, उस जितना भी पशुधन है उसका किसान क्या करते हैं कि ज्यादातर सारे पशुधन को सुबह खोल देते हैं, वो गोचर या ओरण में अपने पशु चरता है और फिर वहां से वापस आता है। वापस आता है तो पशु लगभग रात को 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक आते हैं, तो उनको पशुओं को बांध देते हैं, पशुओं को अपने जो शेड होता है उसमें रख देते हैं और बांध देते हैं। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ये चल रहा है कि अब अगर आप पशुओं को बांध दोगे, रात को ही रखोगे पशुओं को, तो दिन के समय में पशु जो गोबर करते हैं, मेंगनी करते हैं, ऐसा होता है, तो वो उसका जो इफेक्ट है वो पशु का गोबर, बकरी की मेंगनी और जो आपकी भेड़ की मेंगनी है वो आपके कोई काम नहीं आती है, क्योंकि वो गोचरिया ओरण में ही रह जाती है। तो आपकी जमीन को जो ऑर्गेनिक खाद मिलती है, कार्बनिक खाद है, वो कार्बनिक खाद नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह से आपकी जो जमीन है उसकी उर्वरा शक्ति और उपजाऊ क्षमता
1: कम हो
0: वो
1: जाती
0: कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि पशुओं को दिन में अपने खेत में ही रखें, पशुओं का जो गोबर मैंगनी ये सारा होता है वो खेत में डालें, खाद को सड़ने दें 3, 4, 5, 6 महीने। किसकी खाद को, गोबर की खाद को, पशुओं की जैसे गाय है या भैंस है उसकी खाद को सड़ने दें 5, 6 महीने और फिर खेत में डालें, तो आपकी खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। अब उसमें आपने क्या कर लिया, खेत में आपने खेती के साथ साथ फसल के साथ साथ पशु भी रख लिए, अब दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज आप क्या नहीं करते, यहाँ पे आप पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं खेत में, नहीं, कभी कभी कोई कैर खड़ा रहता है या कोई खेजड़ी खड़ी रहती है, वो खड़ी रहती है अपने आप से, बाकी आप अपने से कोई भी पेड़ या कोई भी पौधा नहीं लगाते हैं, नहीं। तो आपको करना क्या चाहिए कि खेत में जो खेजड़ी है वो लगानी चाहिए, खूब सी बड़े वाली खेजड़ी, या हमने थार शोभा भी बनाई है वो, या वो नहीं लगाएं, वो नहीं लगाएं तो आपको क्या करना चाहिए कि जो आप बेर, खजूर, अनार, वो कैर के
1: नींबू
0: पौधे, सांगरी, ये सब आपको लगाने चाहिए, इनके इनके वृक्ष लगाने चाहिए ड्रिप सिस्टम से। जैसे 100 बीघा खेत है, यहाँ खेतों की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, 100, 100, 1000, 1000 बीघा, 1500, 1500 बीघा होती है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आपको कम से कम भी जो खेत का 10% हिस्सा है उसमें आपको अनार, खजूर, ये सब लगाना चाहिए। उससे क्या होगा,
1: हल्दार पत्ता लगाना चाहिए।
0: फलदार पौधे लगाने चाहिए। क्यों लगाने चाहिए, उसका कारण ये है कि जैसे कि आपकी फसल फेल हो गई, मान लो आपने बाजरा लगाया, गेहूं लगाया, ये सब लगाया, तो इससे आपकी जो फसल फेल हो गई तो आप कहाँ जाओगे फिर, उससे आपके फलदार पौधे, इनसे आपको आमदनी मिलेगी,
1: अतिरिक्त आमदनी मिलती
0: हाँ, अतिरिक्त आमदनी मिलती रहेगी। फिर आपका क्या है कि जैसे कि ये दोनों चीज फेल होगी तो कहाँ जाओगे, तो फिर आपका जो पशुपालन वाला है वहां से आपको आमदनी आ जाएगी। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नहीं,
1: रहेगी।
0: कैसे, फसल होती है उसका चारा पशु खाता है, पशु का गोबर खेत में जाता है, फिर वो आप उस गोबर और मेंगनी आप उसको
1: खाद बनाते हैं
0: फलदार पौधे में अप्लाई कर सकते हैं, फिर फलदार पौधे के जो कचरा होता है उसकी खाद बन जाएगी, नहीं, और उसके जो इसके जो फल हैं वो मार्केट में चले जाएंगे। फिर आपको 3 बार आय होगी, एक बार फसल से, एक बार फल वाले पौधे से और पशु से, पशु को
1: अच्छा
0: बेचने से भी आय होगी और पशु के दूध से भी आय होगी,
1: दूध
0: ठीक है। तो इससे क्या, पूरे राउंड द ईयर किसान को आय
1: किसान
0: चल जाती है।
1: को
0: अब किसान का दुख यही है कि वो बेचारा फसल लगाता है, जीरा लगाता है, जीरो को छाछिया खा जाता है, या फिर जीरा लगाता है, जीरा एक बार बिकता है, एक बार बिकने में चलो 10 लाख का जीरा बिक गया, लेकिन उसको 8 लाख का वो उस पे वो खर्चा हो जाता है,
1: खर्चा हो जाता है।
0: 5 लाख का खर्चा हो जाता है, नहीं, ऐसा चक्कर होता है। अब जिस 10 लाख का जीरा लगाया उसमें 5 लाख का खर्चा हुआ, 5 बचा, अब पूरी साल में 5 लाख से कैसे काम चलेगा उस किसान का, बच्चे की फीस देनी, लड़की की शादी करनी है, नए पशु खरीदने हैं, ये सारा है, इतना सारा ताम झाम झंझट है ना, उसको भी बेचारे किसानों को कपड़े भी सिलवाने हैं, नहीं, और खेत का भी कुछ करना है उसको, और खेत की लागत भी देनी है, तो उस 5 लाख से कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि किसान की आय है वो राउंड द ईयर होनी चाहिए, राउंड द ईयर मतलब

0: कम से कम भी तीन बार या चार बार होनी चाहिए। अगर आपने डेयरी कर ली है तो डेली की आमदनी शुरू हो जाती है
1: शुरू
0: उसे,
1: होती
0: नहीं तो आपका जो सरकारी कर्मचारी है उसकी एक बार आमदनी होती है महीने में, नहीं। लेकिन अगर किसान रेगुलर डेली इनकम में जेब में पैसे आते रहे तो फिर घर का खर्चा यूं ही निकल जाता है,
1: निकल जाता
0: किसान को पता ही नहीं चलता। डेयरी करोगे तो दूध घर में आ गया, फल रखे तो घर में फल आ गए,
1: फल आ गई,
0: नहीं स्वास्थ्य अच्छा उससे, सब्जी की तो सब्जी घर में आ
1: सब्जी आ
0: गई,
1: गई,
0: और जो आपने फसल की तो उसका हो
1: अनाज आ
0: गया।
1: गया,
0: तो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो घर चलाने का खर्चा होता है,
1: खर्चा बढ़ता
0: तो घर वैसे ही चल जाता है, उसमें घर में कोई भी खर्चा
1: है,
0: नहीं देना पड़ता
1: नहीं
0: है,
1: देना पड़ता।
0: नहीं। ये हो गया, इसको बोलते हैं समन्वित कृषि प्रणाली। इसमें आपको एक से ज्यादा कंपोनेंट पे काम करना
1: काम
0: पड़ता
1: करना
0: है।
1: पड़ता है।
0: हाँ, तो एक से ज्यादा कंपोनेंट लीजिए, इसमें आपका ऑर्गेनिक भी रहेगा क्योंकि आपको डीएपी नहीं देनी पड़ेगी, यूरिया नहीं देनी पड़ेगी, पशु के गोबर से काम चलेगा, यूरिया चलेगा, इसको समन्वित बोल दी। तो कृपया आप मेरे को दूसरी चीज बताएं इसके बाद में।
1: और अभी गर्मी भी चल रही है तो पशुओं पर मतलब किस प्रकार ध्यान दें गर्मी के मौसम
0: अब
1: में?
0: देखो, गर्मियों का ऐसा है कि जैसलमेर में गर्मी, ये माना जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र जो है जैसलमेर ही है। तो जैसलमेर में सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र जैसलमेर होने के कारण यहाँ पे पशुओं का सबसे बड़ा दिक्कत रहती है। अभी कल ही अखबार में मैंने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर के दायरे में यहीं पे पास में गाय को, मरी हुई गायों को रखा हुआ है 1 किलोमीटर के दायरे में, तो गायें ऐसे पड़ी हैं और सड़ रही हैं। तो इस गर्मी के कारण सबसे बड़ा नुकसान होता है जो पशु एवं मरते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, पीने को पानी मिलता नहीं है, खाना सही प्रॉपर मिलता नहीं है, देखभाल होती नहीं है। इसलिए पशुओं को सबसे क्या करें, सुबह का टाइम जैसे 10 से 11 के बीच का टाइम है, उस समय पशुओं को नहला दें, दूध देने वाला पशु उसको अवश्य नहलाएं एक बार।
1: नहलाएं,
0: दुधारू पशु है, जो दुधारू गाय है या दुधारू भैंस है, उनको एक बार अवश्य नहलाएं, नहीं।
1: गर्मी
0: और अच्छा है, फिर उसके बाद में आपको क्या, उसके बाद में क्या करना है, जैसे कि अपने गाय है, भेड़ है, बकरी है, उनको कम से कम भी दिन में अगर आप उनको चरने के लिए भेजते हैं तो छाव में रखें, दोपहर के समय में किसी भी पेड़ की छाव में रखें। ऐसा नहीं कि दिन में भी वो चर रही हैं, घूम रही हैं, ऐसा नहीं, छाव में रखें। और वो दिन में उनको एक बार कम से कम पानी जरूर पिलाएं, गाय बकरी या भेड़ को, चाहे तो उनको नाड़ी का पानी पिलाओ, चाहे उसको जो अपने क्या होता है उसका जो पानी इकट्ठा होता है ना गाँव में वर्ण
1: हाँ
0: गोचर में,
1: हाँ
0: हाँ उसका पानी पिलाओ, चाहे उस उधर का पानी नहीं मिल रहा है तो घर से भी पानी की व्यवस्था करें, लेकिन पशु को पानी पीने की व्यवस्था जरूर करें।
1: जरूर करनी पड़ती है।
0: पशु पीने का पानी मिल गया तो पशु मरेगा नहीं कम से कम, नहीं। फिर रहा खाना, फिर पशु का खाना है तो पशु का खाने में अपने क्या करेंगे सर, पशु का खाने में अपने क्या करेंगे, जैसे कि पशु का आहार है वो ऐसा होना चाहिए जिससे गर्मी नहीं हो, जैसे पशु को हरा पत्ता पत्ता मिल गया कुछ भी, नहीं, या फिर उसको चारा मिल गया, ये सब, ये सारी चीजें दे। और इसके बाद में भी पशु जैसे कोई बीमार हो जाता है तो तुरंत अपने किसको बुलाएंगे, वेटनरी वाले को बुलाएंगे। जैसे पशु को लू लग गई, चाहे गाय को है, भैंस को है, भेड़ को है, बकरी है, तो उसको आम का पन्ना होता है वो पिलाना चाहिए। आम का पन्ना क्या होता है, जैसे कैरी होती
1: अच्छा,
0: है, अब उस कैरी को आपको क्या करना चाहिए, कैरी का वो पानी में मिला के उसको ठंडा करके और फिर गाय को, भेड़ को, बकरी को और ऊंट को पिलाना चाहिए, उससे उसकी लू चली जाएगी। लू चली जाएगी तो आपके पशु को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं। हाँ, और फिर क्या उसके बाद में क्या है,
1: इस मौसम में क्या क्या किसान भाई कृषि कार्य करें?
0: हाँ ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग ये समझते हैं कि इसे गर्मी तो फालतू है, गर्मी फालतू, लेकिन गर्मी बहुत काम, गर्मी क्या है कि बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही काम की चीज है। मैं बताऊं कैसे, इस समय अगर आप खेत की जुताई कर देते हो गर्मियों में, तो उसके नीचे जो अपने वायरस बैक्टीरिया कीड़े, वायरस बैक्टीरिया कीड़े जो भी लगे होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सारे मर जाते हैं। खेत की जुताई करोगे तो नीचे की जमीन ऊपर
1: ऊपर आ
0: आएगी, ऊपर
1: जाएगी
0: की नीचे चली जाएगी, जो नीचे की जमीन में कीड़े वीड़े होते हैं
1: जी।
0: ना वायरस पुरानी
1: हाँ
0: फसल के, वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो एक तो ये फायदा है।
1: हाँ
0: दूसरा आपको क्या करना चाहिए गर्मियों में खेतियों के कार्य में, जैसे कि आपके पास अगर पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, या फिर कोई इस वो आपका कुआ ट्यूबवेल है, तो इस समय में आप जो ककड़ी लेते हैं, खीरा लेते हैं, लौकी लेते हैं, ये काचरी लेते हैं, ये मतीरा लेते हैं, ये 3 महीने की फसल, इसको जायद बोलते हैं,
1: जायद
0: जायद,
1: बोलते हैं।
0: हाँ, तो ये 3 महीने की फसल ले सकते हैं। इसमें आपको पूरा जो फसल में फायदा नहीं होता वो इसमें हो जाता है, क्योंकि इस समय की जो फसल होती है उसका जो प्राइस होता है रेट, उसमें 3 गुना 4 गुना 5, 4 या 5 गुना रेट मिलेगा आपको।
1: और नकदी फसल है।
0: हाँ, उसको नकदी फसल बोलते हैं सारे, इतना इतना रेट मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं इसमें गर्मियों में, ये आपको फायदा रहेगा।
1: और मिट्टी पानी की जांच
0: हाँ,
1: के
0: मिट्टी
1: लिए?
0: पानी की जांच, अब मिट्टी और पानी इन दोनों की जांच के लिए आपको जो आपका सुपरवाइजर होता है गांव में, कृषि पर्यवेक्षक बोलते हैं जिसको, आप उससे संपर्क करें, उसको दे दें अपनी मिट्टी के सैंपल नमूने, वो आपका जो कृषि विभाग है जो आपका रामगढ़ रोड पे है वहां पे, उस कृषि विभाग में आपको देगा। उस कृषि विभाग में आप जाएं और वहां पे आपको सारे नमूने आप उसको सबमिट करें, उसके बाद 10

0: धीरे, पहले वहां भी बालू थी,
1: बाल्टी।
0: अब वो दोमट हो रही है धीरे धीरे, नहीं तो ऐसे चेंज हो रही है, तो वो बता देंगे। फिर जैसी मिट्टी है और जैसा उसका पीएच है, पीएच मतलब क्षारीय लवणीय है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फसलें लेनी है। यही पानी का केस है, आपका ट्यूबवेल है, पानी का सैंपल लीजिए, वहां जमा करवाइए, वो पानी का आपको बता देंगे। क्या बताएंगे कि पानी आपका कौन सा है,
1: कौन
0: लवणीय
1: सा
0: है?
1: लवणीय क्षारीय है,
0: हाँ, लवणीय, क्षारीय है और
1: मटमैला
0: मटमैला
1: मटमैला
0: नहीं,
1: टाइप
0: उसको
1: का। हाँ
0: सिल्टी सिल्टी
1: हाँ
0: बोलते हैं।
1: हाँ
0: लवणीय है, क्षारीय है और नॉर्मल पानी है।
1: हाँ
0: नॉर्मल हो गया, तीन प्रकार के पानी हो गए।
1: गैस
0: कई बार पानी में तेल भी आता है, कई बार गैस भी आती है, कई बार
1: भी
0: पानी मटमैला भी आता है, नहीं तो ये
1: आती
0: चीज भी आपको बता दी जाएंगी।
1: है।
0: तो उसमें बता देंगे कि अगर पानी क्षारीय है तो आप, क्षारीय है तो आपको
1: खारा
0: क्या,
1: पानी हो गया,
0: हाँ कौन सी फसल उगानी है,
1: लवणीय
0: और क्षारीय के अलावा अगर पानी कौन सा है, लवणीय है, तो कौन सी फसल उगानी है, और क्षारीय और लवणीय दोनों ही नहीं है तो कौन सी फसल उगानी है,
1: पानी
0: और
1: में
0: हाँ
1: गैस है तो
0: जैसे तो
1: उसका
0: क्या
1: क्या करना
0: करें,
1: है।
0: ये
1: हाँ,
0: क्या करना है, सारा ऐसे चीज बता देंगे।
1: और अभी किसान भाइयों के लिए राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है
0: हाँ, ये
1: उसके
0: बहुत
1: बारे में।
0: इंपॉर्टेंट चीज। जब किसान
1: हाँ
0: भाई क्या करते हैं, किसान भाइयों को पता नहीं रहता, गांव में रहते हैं, अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है, अखबार आता तो पढ़ नहीं पाते हैं, और कोई उनको बताता नहीं है, रेडियो पे सुनते नहीं है, पता नहीं है तो ये कौन सा प्रोग्राम कब आएगा। वो तो किसान, अब सबसे बड़ी क्या है कि मोदी सरकार ही चाहते हैं कि अपनी भारतीय जो कृषि है, वो खेती है, किसान भाई, जो किसान भाई हैं वो क्या करें, विकसित विकसित हों, नहीं किसानों की दुगुनी हो, तिगुनी
1: आय
0: हो, पांच
1: दुगनी
0: गुनी
1: दुगनी
0: आय
1: हो।
0: बढ़े।
1: हाँ
0: तो उसके लिए करना पड़ेगा कि जो भारत सरकार, विदेशों में तो ये चल रहा है, अमेरिका में, कि सब कुछ सब्सिडाइज है, मतलब फर्टिलाइजर, यूरिया, बीज,
1: बीस।
0: खेती, ट्रैक्टर,
1: हाँ
0: बिजली, सब कुछ सब्सिडी पे है। तो वैसे ही यहाँ पे किया है, यहाँ पे भी हर चीज में सब्सिडी दी जा रही है, योजनाएं। तो एक तो सबसे बढ़िया योजना है जो किसान की, जो फेंसिंग है वो। अब क्या दिक्कत क्या आती है कि एक खेत यहाँ, एक खेत वहाँ है, एक दूसरा वहाँ है, ये किसान के पास ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है तो फेंसिंग क्यों करेगा, फेंसिंग नहीं करेगा, इसके पास ट्यूबवेल है, तो बिना बिना फेंसिंग के इसका तो पशु चर जाते हैं, सारी सारी खेती पशु चर जाते हैं। तो इसको किसान, इसको किसान को क्या करना चाहिए, किसान खेत के चारों फेंसिंग करनी चाहिए। तो उसके लिए 60 से 70% सब्सिडी मिलती है, जो स्टेट डिपार्टमेंट देता है आपको। उसके लिए आप अप्लाई कर दो, जो तरीका होता है उसके थ्रू अप्लाई करोगे तो आपको सब्सिडी मिल
1: सब मिल
0: जाएगी।
1: जाएगी।
0: फिर इसके बाद होती है गोटरी, जैसे गोटरी बकरी पालन पे, बकरी पालन पे भी आपको सब्सिडी मिलती है। बकरी पालन से आप इतना बढ़िया आय हो गया, इतनी बढ़िया व्यवसाय है कि अगर आप घर पे बकरियां पाल लेते हो तो एक बकरी 15,000 की करीब हो जाती है, नहीं, और साल में वो एक बार ब्याहती है तो दो मेमने होते हैं, तो 15-15, 30 हज़ार के वो मेमने हो जाते हैं, नहीं ऐसा है। तो उसके साथ साथ में आपको, उसके साथ साथ में क्या करना है आपको, कि इन बकरियों को आप जैसे कि इसके लिए जो आपको राज्य सरकार है का पशु पशुपालन विभाग है, वो आपको क्या करेगा, ऋण वो देगा, पैसा देगा आपको, सब्सिडी देगी। हाँ,
1: सब्सिडी
0: सब्सिडी देगी,
1: देगा।
0: उस सब्सिडी को आप लेके और अपना बकरी पालन करें, 100 तक बकरियां पालें, 100 बकरियां पालेंगे तो कम से कम भी आपको 1 महीने की 1 लाख की आय हो जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। जो बकरी अपने कम क्षेत्र में पाल सकते हैं, जिसके पास छोटी भूमि है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, वो आदमी भी बेचारा अपनी बकरियां पाल के और अपनी आय वो ले सकता
1: ले
0: है, और
1: सकता
0: ये
1: है।
0: बहुत ही बढ़िया कमा सकता है। अपनी जो यहाँ की जैसलमेर की और बाड़मेर की बकरियां हैं, वो हवाई जहाज से पहले जयपुर जाती हैं, फिर जयपुर से सऊदी अरब, अमीरात, इधर जाती हैं, क्योंकि उनके उनका जो फ्लेश होता है वो बहुत अच्छा था। फ्लेश कैसे होता है, जैसे मांस, यहाँ का जो खाना होता है ना चारा, वो बढ़िया होता है, क्योंकि एक जो बकरी की जो लूम है वो, और जो यहाँ का सेवन घास, रंजन घास वो खाती हैं, तो उनका जो बकरी का जो जो मुसलमान खाते हैं, अपने तो खाया नहीं भाई, मांस कैसे होता है, नहीं तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अपनी बकरियां वहां तक जा रही हैं।
1: और भी कोई योजना है
0: और
1: सरकार
0: भी
1: द्वारा चलाई
0: योजनाएं हैं,
1: गई
0: जैसे आपके
1: जैसे।
0: सोलर है,
1: हाँ
0: फिर ट्यूबवेल करवाना है, फिर ड्रिप सिस्टम है, फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है, फिर पौधे लगाना है, फिर पेड़ लगाना है, फिर खजूर है, आम है, अनार है, जो भी है, ये सारी योजनाएं चल रही हैं, पीएम कुसुम
1: फसल
0: योजना।
1: फसलदार जो
0: हाँ,
1: पौधे पर लगा रहे हैं उसके लिए सरकार
0: ये
1: द्वारा
0: हो गई। हाँ,
1: सब्सिडी।
0: फसल के लिए सब्सिडी दे रही है, इनके बीज पे सब्सिडी दे रही है, फिर इसके बाद में भी जो आपको क्या, सोलर पे सब्सिडी दे रही है, फिर इसके बाद में भी आपको इंश्योरेंस है, जैसे फसल का इंश्योरेंस, फसल
1: फसल
0: बीमा है,
1: बीमा
0: फिर इसके बाद में आपको जैसे फसल बीमा के बाद में आप बोलेंगे तो पशु बीमा है, ठीक है, फिर फसल और पशु बीमा हो गया ये है। इसके बाद में भी आप बोलेंगे तो जैसे कि और भी छोटा है, छोटा मोटा कोई बीमा बीमा है, नहीं वैसे होता है, नहीं
1: और FPO के बारे में जानकारी
0: एफपीओ,
1: देना है।
0: देखो एक
1: हाँ
0: ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें होता क्या है कि जैसे कि 50 किसान अपन ने पकड़ लिए, 50 के 50 आपका जीरा उगा रहे हैं, नहीं, तो जीरे वाले किसान अपन ने पकड़ लिए। अब उनको क्या है कि एक किसान का जीरा 30,000 में बिक रहा है, दूसरे का 40 में बिक रहा है, तीसरे का 50 में बिक रहा है, तो ये चीज अलग हो जाती है। वो सारे मिलके एक क्या करेंगे कि एक सारे मिलके

0: किसान वो
1: एक
0: सरकार
1: संगठन
0: उनको
1: बना
0: पैसा
1: लेंगे।
0: दे सकती है, सरकार कंपनी टाइप हो जाते हैं सारे मिलके, वो सरकार पैसा देगी भाई आप स्टोर हाउस बना लो या स्टोरेज बना लो, नहीं स्टोर हाउस या स्टोरेज बना लो तो आपका जो जीरा है अभी आपका निकला है बिखेर से, निकलते ही जीरे को अगर आप मंडी में डाले तो भाव कम मिलते हैं, तो उस जीरो को आप क्या
1: स्टोरेज
0: करोगे,
1: करके
0: हाँ दो दो साल तक रोक लो जीरा, नहीं 2 साल तक जीरा, 2 साल तक का 2-3 महीने तक जीरा रोक लो, 2-3 महीने जब अच्छा भाव आता है तो सारा का सारा उंजा में बेचो या फिर आप
1: जो भी मंडी हो।
0: जो भी हो वहां पे आप मंडी में बेच दो जीरा, नहीं
1: अच्छे रेट, जहां अपन को अच्छे रेट मिल जाए।
0: जहां अपने को अच्छे रेट्स मिले तो वहां बेचो, तो किसान भाइयों को फायदा हो गया, इसी को FPO बोलते हैं। फिर उसके FPO के आगे वो सारा एक साथ इंश्योरेंस करा लेंगे, सारे एक साथ में आपको वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट भी बना लेंगे, नहीं फिर जीरे से और कुछ बनता है तो वो भी बना लेंगे, फिर उनको ट्रैक्टर चाहिए तो सारे एक साथ ट्रैक्टर खरीद लेंगे, नहीं एक ट्रैक्टर खरीद लेंगे पैसा लेके बढ़िया, कंबाइन चाहिए तो जीरे के हार्वेस्टिंग के लिए कंबाइन खरीद लेंगे, एक कंबाइन के बहुत पैसा लेते हैं वैसे 20-30-40-50 लाख रुपए लगते हैं, 1 करोड़ का कंबाइन आता है तो वो खरीद लेंगे सारे जीरे वाले किसान आते हैं, तो ये सारी हैं। फिर उनको एक साथ में बीज आ जाएगा, एक साथ अवेयरनेस हो जाएगी, इसी को FPO बोलते हैं। हाँ आजकल बहुत ही
1: और अभी
0: चल रहा
1: अपन
0: है,
1: देख रहे हैं कि भी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक का प्रयोग कर रहे हैं,
0: हाँ
1: तो किसानों को जैविक के लिए मॉडिफाइड करने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखो उसमें आजकल सभी ऐसे बोलते हैं, अपने मोदी जी भी बहुत प्रेरित कर रहे हैं, अपने पहले क्या दिक्कत थी कि अपने को खाने के लिए कुछ नहीं था, पेट भरने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने को कैसे न कैसे अनाज चाहिए था, अनाज चाहिए था तो तरीका यही था कि अपने जो हाइब्रिड वेराइटी है वो लेके आओ, नहीं हाइल्डिंग वेराइटी तभी पैदा देगी जब उसमें अपने फर्टिलाइजर डालेंगे और पानी डालेंगे तगड़ा, तो अपने फर्टिलाइजर भी डाला पानी डाला तो नीचे पानी खत्म हो गया और फर्टिलाइजर डाला तो जमीन खराब हो गई, नहीं तो अपने पेट तो भर गए, लेकिन अब पेट भर गए तो अपने कैंसर हो रहा है, किडनी हो रहा है, सब अपने 50 साल तक ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल तक चल रहे हैं, लीवर फेल है, सबके BP है, सबके शुगर हो गया है, सबके हार्ट की प्रॉब्लम है, नहीं
1: कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है।
0: हाँ कुछ ना कुछ सबकी प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने को करना क्या चाहिए कि भाई अब इन प्रॉब्लम का एक ही तरीका है, जब पेट भर गया है सबका तो अपने क्या करो, अब यूरिया और DAP की जगह गोबर की खाद डालो, हरी खाद डालो, ये हरी खाद होगी गोबर की खाद होगी, और इसके बाद भी आप क्या करो, इसके बाद भी आपको जो डालना है तो आप वर्मी कंपोस्ट बनाओ, नहीं वर्मी कंपोस्ट डालो, तो ये 7 चीज़ डालोगे आप, जैसे हरी खाद बना के ढेंचा की खाद होती है, ढेंचा आपने उगा लिया खेत में और उसको पलटी मार दी पूरा ट्रैक्टर चला के, नहीं तो हरी खाद हो गई, वो हरा सोना है पूरा साल तक, उसको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा आपको, क्या यूरिया क्या और कुछ, तो बहुत ही तगड़ी खाद हो जाएगी आपको। और फिर उसके बाद में जैसे आप देखते हो केंचुए की खाद है, तो होटलों में सब्जी वब्जी उगाते हैं इनमें केंचुए की खाद बहुत ही शानदार होती है, और फिर मींगने की खाद है वो भी बहुत शानदार होती है, नहीं हाँ तो ये होता है, और उसके बाद हाँ इसी पे आ जाएंगे तो इससे धीरे धीरे अपना स्वास्थ्य भी सही होगा, मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही होगा और अपने फिर आगे बढ़ते रहेंगे, नहीं
1: और ये खेजड़ी
0: हाँ
1: खार की शोभा, उसके बारे में
0: देखो
1: बात भी करें
0: ये
1: अपन।
0: अपने जो खेजड़ी थी पहले ये थी अपने 15 फीट 20 फीट ऊंची, उसमें दिक्कत ये थी उसके ऊपर चढ़ के सांगरी तोड़नी पड़ती थी अपने, और सांगरी उसके ऊपर तोड़ भी नहीं पाते थे, नहीं फिर उसके कांटे होते थे दो चीज, और फिर तीसरी चीज होती थी जो उसकी लूंग होती थी ना, नहीं उसकी जो लूंग होती थी वो लूंग अपने को काटनी पड़ती थी, छांगनी पड़ती थी, तो वो लूंग छांगनी पड़ती थी, तो अपन ने क्या किया कि इन वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों नहीं इस खेजड़ी को छोटा कर दिया जाए, तो उसको 20-25 साल के अनुसंधान किए, उसके ऊपर अनुसंधान करके उस ऐसा जीन ढूंढा जो ड्वार्फिंग जीन हो, तो उन उस पर अपन ने क्या कर दिया, उसको खेजड़ी का हाइट कम कर दी, 6 फीट की हाइट कर दी, उसके वहीं पे सांगरी लग जाती है, सुताली होती है, और वो नहीं हो पाता उसमें आपको कांटे नहीं होते,
1: काटे नहीं
0: तो
1: होते।
0: बकरियां उसको चर भी सकती हैं, बकरियां बोट भी सकती है, नहीं और फिर उसको क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया होती है कि उसकी जो सांगरी लगती है वो अच्छे से आप तोड़ सकते हो, एक के 10-15 किलो सांगरी लगेगी और उन सांगरी को आप मार्केट बाजार में बेच सकते हो,
1: और सांगरी के अभी रेट भी मार्केट में बहुत अच्छे मिल रहे हैं।
0: हाँ सांगरी के रेट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं।
1: एक और है कि भाई जो अपन डेयरी, जो किसान भाई है जो गाय पालन पशुपालन करते हैं बकरी पालन करते हैं,
0: हाँ
1: तो उसमें डेयरी विकास किस प्रकार से करें?
0: डेयरी देखो सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे जो सबसे जैसलमेर के जो सिटी का बाहर का एरिया होता है, उस बाहर के एरिया के जो होता है वहाँ पे एक सब्जी उगानी चाहिए और ये या फिर डेयरी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के एरिया में सिटी के पास के एरिया की जो जोत होती है उसका आकार कम, सिटी के पास की जो एरिया होता है वहाँ पे कम होता है, या तो किसी के पास 10 बीघा जमीन होती है, किसी के पास 5 बीघा जमीन होती है, नहीं तो 10 या 5 बीघा जमीन होगी तो उस आदमी को

0: उस एरिया में अगर अपने खेती करेंगे बाजरा उगाए तो बाजरा कम होगा, उसकी बाजरे का पैसा नहीं मिलेगा उसको, नहीं बाजरे का पैसा नहीं मिलेगा। तो उसमें खेत किसान को क्या करना चाहिए, या तो वहाँ पे मशरूम उगा लो या सब्जी उगाओ या फिर डेयरी करो। नहीं तो उस एरिया में डेयरी करो, डेयरी से बहुत ही अच्छा इनकम होगा, डेली आप दूध की सप्लाई कर सकते हो, अपना डेयरी का जो गोबर होगा वो आप वहाँ पे डाल सकते हो खेत में, उससे बहुत ही बढ़िया उपजाऊ होगा।
1: और जो कृषि अनुसंधान केंद्र मतलब काजरी,
0: हाँ
1: वो किसानों के लिए क्या क्या कार्य कर रही है?
0: देखो हम तो काजरी के वैज्ञानिक हैं, तो
1: हाँ
0: किसान सबसे काजरी इसलिए बनाई गई थी शुरू में कि जो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको, जो ये डेजर्ट फैल रहा है, रेगिस्तान फैल रहा
1: रेगिस्तान
0: है,
1: फैल रहा है,
0: उस रेगिस्तान को अपने वो कर सकते हैं, रोक सके,
1: रोक
0: वरना
1: सके।
0: ये रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच जाता। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ के लिए जो सेवन घास, अंजन घास, धामन घास, खेजड़ी, कैर, पीलू, फिर जो आपका बाजरा, सांगरी, जो आपका
1: खजूर,
0: खजूर, अनार, अनूर, इन सब पे अनुसंधान करके इनकी बढ़िया किस्में बना रहे हैं। फिर थार पार कर राठी, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊँट, सभी गाय बकरी, इन सब पे अनुसंधान करके और ये बता रहे हैं कि कैसे इनका बढ़िया उपाय बढ़े, कैसे बढ़िया बनाएं और कैसे अच्छा रखें, ये काम है।
1: तो उसके लिए आप किसानों को से कैसे संपर्क करते हो?
0: किसानों को देखो हम बुलाते हैं, बुला के हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनके घर पे जाते हैं, वहाँ पे भी उन्हें ट्रेनिंग आयोजित करवाते हैं, घर में जाके भी वहाँ ट्रेनिंग आयोजित करवा के काफ़ी दूर में उन किसानों को बैठा के प्रशिक्षण देते हैं। और ऐसा ही है, ऐसे ही हम किसानों से
1: तो
0: जुड़े
1: उसके लिए
0: रहते हैं।
1: आपके कुछ ग्रुप बने हुए हैं?
0: हाँ हमारे ग्रुप बनते हैं, उनको CIGFIG बोलते हैं, कॉमन
1: हाँ
0: इंटरेस्ट ग्रुप, FIG होते हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, और तीसरा ग्रुप होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सारे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसे ऐसे ग्रुप में रहते हैं तो किसानों का भला होता है।
1: और इंदिरा गांधी नहर परियोजना
0: ये
1: जो कि जैसलमेर के लिए एक किसानों
0: वरदान
1: के
0: है।
1: लिए वरदान है,
0: हाँ
1: लाइफ लाइन
0: हाँ
1: है, उसके बारे में।
0: देखो मैं इस IGNP प्रोजेक्ट पे, मेरा एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इस पे मैं इस पे पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि मैंने ये पाया है कि IGNP से पहले यहाँ कुछ नहीं था, IGNP आने के बाद में यहाँ पे आपके पहले सिर्फ खेजड़ी थी और कैर था और भेड़ थी और
1: बकरी,
0: थार पर्वत था और एक बकरियाँ थी। अब ये जो ही IGNP आई है इसके बाद में क्या हुआ है, IGNP आने के बाद में यहाँ पे अनार हो गया है, कैर हो गया है, आपका आपका खजूर हो गया है और आपका बेर हो गया है, ये सारी चीजें हो गई हैं। नहीं तो
1: कृषि क्षेत्र में इसमें आने से विकास हो गया,
0: हाँ
1: जो
0: बहुत ही
1: पूरा
0: ज्यादा
1: रेगिस्तान
0: विकास हुआ
1: था।
0: है,
1: हाँ,
0: पूरा जो रेगिस्तान था अब वो हरा भरा हो
1: हरा
0: गया
1: भरा
0: है,
1: हो गया,
0: पूरा लस ग्रीन हो
1: अच्छा।
0: गया है, पूरी वहां पे खेजड़ी, सांगरी, सारी
1: तो
0: चीजें हो गई हैं, तो बिल्कुल पूरा का पूरा वहां पे
1: ये नहर आने से मतलब ये जैसलमेर का
0: कायांतरण, कायापलट,
1: कायापलट हो गया।
0: आज जैसे पूरा कायापलट हो गया है।
1: और अंतिम चलते सवाल एक और है कि अभी जो केचुआ पालन है उसके बारे में जानकारी देते
0: केंचुआ पालन ऐसा है कि अगर आप केंचुआ पालन करेंगे, भैंस का,
1: हैं।
0: गाय का गोबर ले लो, घर का कचरा है और खेत का कचरा ले लो, उसमें केंचुए छोड़ दो और उसका टेम्परेचर और उसका ह्यूमिडिटी मेंटेन करो, उसी से आपको वर्मी कंपोस्ट बन जाती है, इसको केंचुआ पालन बोलते हैं। फिर आप क्या करोगे कि ये केंचुए आप उसका जो खाद बनती है उसको ले जाके नर्सरी में, पोली बैग में, पोली हाउस में, इनमें छोड़ दो। नहीं तो वो आपका जो खाद है वो बहुत ही बढ़िया खाद होती है केंचुए की, वो 100 रुपये किलो जाती है, 150 रुपये किलो जाती है, 200 रुपये किलो जाती है, यहाँ बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं, होटल्स में भी बेच सकते हो, मेरी ओर से लेके थार तक। नहीं तो ऐसा है।
1: अच्छा, खाद बनाने की प्रक्रिया यही है कि भाई अगर
0: हाँ
1: कछुआ खाद है बनाए तो अपन की मतलब अच्छी इनकम भी आपकी हो सकती है।
0: सही है।
1: तो दिलीप जी, आप हमारे स्टूडियो में है, आपने हमको बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसलिए आपका तहे दिल से
0: शुक्रिया,
1: शुक्रिया। राम राम सर।
0: ठीक है, थैंक यू।

0: समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री।

0: फसल बीमा।
1: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
2: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
1: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
2: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।
4: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का अपना पसंदीदा कार्यक्रम किसान वाणी। श्रोताओं, इस समय शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत में आज हमको आपको सुनवा रहे हैं संतूर बांसुरी जुगलबंदी, राग मिश्र पीलू। कलाकार हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे पंडित शिव कुमार शर्मा और हरि प्रसाद चौरसिया। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए लुत्फ उठाइए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम है फिल्म संगीत।

बाते हुए लम्हों, जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति के रूप में, जिसे गाया था रूप कुमार राठौड़ ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने आपके लिए लिया है फिल्म दिल चाहता है से।

चुरा लिया है तुमने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी अलका याग्निक और शान की। श्रोताओं, दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए।
1: कितने पास है

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

फना फिल्म का ये गीत सुना ज्योति कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। श्रोताओं लीजिए सुनिए सुगम संगीत। सुगम संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें। कार्यक्रम था सुगम संगीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, से कुछ ही देर में यानी रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे इवनिंग न्यूज, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचो सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि कोऑर्डिनेशन ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज फाइनेंसेस स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है,
2: हर फैसले से पहले एक सवाल,
1: क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता

0: मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए लुत्फ उठाइए फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हम है राही प्यार के, इस फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था हम है राही प्यार के। श्रोताओं सुनिए ये संदेश।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun!

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं पठान खान। श्रोताओं, लीजिए सुनिए इनके गाए हुए लोकगीत।

ले गेरा बाजतुरी अमला बेला अपना

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। राजस्थानी लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार थे पठान खान। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल FM बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शामे गजल। शामे गजल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की गाई हुई गजलें।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम शामे गजल। शामे गजल कार्यक्रम में आज हमने आपको चंदन दास की गाई हुई गजलें सुनवाई। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया, इस फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दिल है कि मानता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए धड़कन फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

दीवाना फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में बरसात फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, बरसात फिल्म के इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल। अब से कुछ ही देर में यानी रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस

0: संभावित कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्ध की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Kiran Jha. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji.